FM बैंड के 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 24वीं तिथि तदनुसार 16 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: लिए जाएंगे, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंटसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आए सुनते खेती की बातें, दलहनी खेती में मृदा उर्वरता में वृद्धि, प्रतिमा वर्मा से।
4: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें दलहनी फसलों से मृदा में सुधार की। जी हां किसान भाइयों, दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तपन, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। इनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण और मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम भी कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6 से 8 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गोंद की तरह मृदा कणों में स्थिरता प्रदान करती है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा जल संचयन में वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का और ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होने लगता है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है। कीट और रोगों के रोगजनकों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार दलहनी फसलें की खेती से मृदा की उर्वरता में

0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड 149 149।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

हम लोगों ने दुनिया को योग का सूत्र दिया है, ध्यान का सूत्र दिया है। ध्यान करने का मतलब है अपनी शक्ति से परिचित होना, अपनी क्षमता से परिचित होना, अपना सृजनात्मक निर्माण करना, अहिंसा की शक्ति को प्रतिस्थापित करना। जो आदमी अपने भीतर गहराई से नहीं देखता, वह अपनी शक्ति से परिचित नहीं होता। जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, जो अपनी शक्ति को नहीं जानता, उसकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। अगर काम करने की उपयोगिता और क्षमता भी है तो वह शक्ति सृजनात्मक हो जाती है। आज दुनिया में सुविधावाद एवं भौतिकवाद बढ़ रहा है। जितनी जितनी जीवन में कामना, उतनी उतनी ध्वंसात्मक शक्ति। जितना जितना जीवन में निष्काम भाव, उतनी उतनी सृजनात्मक शक्ति। दोनों का बराबर योग है। प्रश्न होगा कि सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे करें, इसका उपाय क्या है। सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए अनेक उपाय हैं। शक्ति के जागरण के अनेक साधन हो सकते हैं, पर उन सब में सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। हमारी बिखरी हुई चेतना, विक्षिप्त चेतना काम नहीं देती। ध्यान का मतलब होता है कि विक्षिप्त चित्त को एकाग्र बना देना, बिखरे हुए को समेट देना। डेनिस वेटली ने अच्छा कहा है, खुशी तक पहुंचा नहीं जा सकता, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसे अर्जित नहीं किया जा सकता, पहना या ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह हर मिनट को प्यार, गरिमा और आभार के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। हम अपने प्रति मंगल भावना करें कि मेरी सृजनात्मक आध्यात्मिक शक्ति जागे और मेरी ध्वंसात्मक शक्ति समाप्त हो, यह मूर्छा का चक्र टूटे। यदि इस तरह की भावना निर्माण में हम सफल हो सकें, तो चेतना का विकास अवश्यंभावी है। शक्ति के दो रूप हैं, ध्वंसात्मक और सृजनात्मक। कोई आदमी अपनी शक्ति का उपयोग सृजन में करता है, तो कोई आदमी अपनी शक्ति का उपयोग ध्वंस में करता है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो शक्तिशाली हैं, पर उनकी शक्ति का उपयोग केवल ध्वंस में होता है। वे निर्माण की बात जानते ही नहीं, वे जानते हैं ध्वंस, ध्वंस और ध्वंस। इसी में सारी शक्ति खप जाती है। हमारी दुनिया में आतंकवादी, हिंसक एवं क्रूर लोगों की कमी नहीं है। इस दुनिया में हत्या, अपराध और विध्वंस करने वालों की भी कमी नहीं है। आदमी शांति की खोज में है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म में गए बिना शांति नहीं मिल सकती। उन सच्चाइयों से रूबरू नहीं हो सकते जो सच्चाइयां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। सारा ज्ञान पदार्थ की खोज और उसके उपयोग में खर्च हो रहा है। आत्मा की ओर से जैसे आंख मूंद ली गई है। अमेरिकी लेखक आइजैक एसिनो कहते हैं, आज जीवन का सबसे दुखद पहलू यह है कि विज्ञान जिस तेजी से जानकारी बटोरता है, समाज उस तेजी से उसकी समझ पैदा नहीं कर पाता। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज व्यवस्था और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, इन तीनों का लक्ष्य रखे बिना चहुमुखी और संतुलित विकास लगभग असंभव है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र, सबकी शांति, सुरक्षा और सुदृढ़ता का पहला साधन है आध्यात्मिक चेतना का जागरण और अहिंसा की स्थापना। अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षा का विश्वसनीय साधन नहीं माना जा सकता।

आज कोई भी राष्ट्र अध्यात्म की दृष्टि से मजबूत नहीं है, इसलिए वह बहुत शस्त्र साधन संपन्न होकर भी पराजित है। हमें नए विश्व का निर्माण करना है। लेखिका एल एम मॉन्टगोमेरी के शब्दों में, क्या यह सोचना बेहतर नहीं है कि आने वाला कल एक नया दिन है जिसमें फिलहाल कोई गलती नहीं हुई है। नया चिंतन, नई कल्पना, नया कार्य, यह अहिंसा विश्व भारती की एक नए मानव एवं नए विश्व निर्माण की आधारशिला है। कभी बनी बनाई लकीर पर चलकर बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते। जीवन में नए नए रास्ते बनाने की जरूरत है। जो पगडंडियां हैं उन्हें राजमार्ग में तब्दील करना होगा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना हरिओम शरण की आवाज में। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। खुश रहना भी एक कला है। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर पावन कुमार वर्णवाल रांची से।

0: आजकल की लाइफ स्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हम एक तनाव के वातावरण में ज़िंदगी जी रहे हैं उस तनाव को कैसे कम करें, और जो लोगों में एक संवादहीनता और एक अकेलापन का एहसास होने लग गया है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल। डॉक्टर बर्नवाल, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है, कैसे लोग अपने अंदर डेवलप करें?
1: आज जो खुश है वो सफल है, यानी आज इस चीज़ की लोगों में बड़ा ही कमी है। लोग इस चीज़ के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, कैसे हम परिवार को खुश रखें, समाज में बेहतर कर सकें। और अगर हम खुश रहते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, यानी मानसिक बीमारी कम से कम होती है। और अगर मन की बीमारी कम होती है तो निश्चित तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सा शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है। खुश रहना एक कला है, और जो आदमी इस कला को सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में डाल लिया वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है और बहुत संतुष्ट रह सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहली चीज़ें हैं कि इसकी शुरुआत हमारी घर से होती है, यानी जिस फैमिली में सारे लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पूरे इन्वायरमेंट खुश है, उनके सगे संबंधी खुश हैं, यानी उनके दोस्तों लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ता है। यानी अगर फैमिली में सारे लोग अगर खुश हैं तो उसका इफ़ेक्ट उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई भी आदमी खुश तभी रहेगा जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से करेगा, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या जहाँ काम कर रहा हो उस प्लेस हो या पढ़ाई का प्लेस हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं अगर वो अपनी दिनचर्या को देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण होगा कि वो अपनी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कमी कर दिया है, यानी उनकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही है। जैसे

0: दिनचर्या की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमारी होती है खान पान से, मतलब हम क्या खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जिससे कि खुश रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने दोस्तों को, परिवार वाले को, अपने सगे संबंधियों को समय दें। इसके साथ साथ हमारे जो जिस धर्म के हैं, हम पूजा पाठ पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारा टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरह का है, यदि ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, साथ ही अगर नशा जैसी चीज़ों को भी अगर हम अपने ज़िंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, उससे अगर दूर रखें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: खुशी तो आपके अंदर समाहित है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। खुश रहने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग तनाव के वातावरण से जी रहे हैं
0: जी।
1: हमारे रोजमर्रा की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित सी हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ नहीं पाते हैं तो फिर तनाव हो जाता है, और यही तनाव दुख में बदलता है, आप अवसादित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मन में लालसा क्यों होती है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस पाने की चाह लोगों में लगी रहती है।
0: एक्चुअली व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतनी धन है, इतनी दौलत है, वो इस पोस्ट पर है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी चीज़ें उसके पास है। जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, और उस कमी को पाने के लिए हम, जो हमारे दिमाग नहीं कहता है, लेकिन दिमाग का एक पार्ट नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पार्ट उस पर इतनी हावी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ की ललक हमारे में बढ़ती है, और बढ़ने के कारण से कुछ इस तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिसके कारण से हमें खुशी मिल नहीं पाती है, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जितनी भी रूटीन वर्क है, जो भी हमारी क्रिया है, सबको खराब कर लेते हैं। इसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं।
1: लोगों में अकेलापन घिरता जा रहा है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
0: जी।
1: और जो एक लोगों में जो बातचीत था वो कहने के खत्म सा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गजट से लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन सामने मिलकर उनसे बातें कर अच्छी अच्छी बातें करके ये इस चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये संवादहीनता क्यों हो गई है, लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लग गए हैं?
0: पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही कि डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री और विश्व में आया है, तब से जो संवादहीनता की प्रवृत्ति लोगों में, संवादहीनता जैसी चीज़ें हमारे लगभग सारे लोगों में आया है। कुछ लोग ये चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जो इससे डिजिटल से दूर रहते हैं। अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें हम ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, और उससे रिलेटेड इवन हमारे जो कमाई का साधन है वो भी उसी से रिलेटेड चीज़ों में हम ढूंढते रहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बड़ा ही बुरा पड़ता है, और हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उसे तरह तरह का बॉडी में चेंजेज आने लगती है। तो ये तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि आप एक जगह एक रूम में बैठकर आपने आप को एक सेंट्रलाइज कर लिए हैं, आप किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बातें नहीं करेंगे तो जो ब्रेन जो रासायनिक पदार्थ है, जिसे सीरोटोनिन जो कहते हैं, उसका सिक्रीशन तो होगा ही नहीं। जब वो सिक्रीशन ही नहीं होगा सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन प्लेजर हार्मोन, खुश देने वाला हार्मोन है, खुश देने वाला केमिकल्स है, तो जो हमारे ब्रेन में वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो हम तो खुश नहीं रह पाएंगे। इवन जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं, सब में यही हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में। आज के ज़माने में
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता। खुश रहना भी एक

0: भूमिका अभवत्। मार्षः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की

0: the winning mark in 16.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पल में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे रागरंग, 7:45 पर आप सुनेंगे कानून की बातें रांची से, दिल्ली से आप समाचार प्रभात सुनेंगे 8:00, 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज, रांची से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर, 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन जो हर प्लामों का समय होगा 9:00, 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, हिंदी में समाचार का समय होगा 10:00 जो दिल्ली से प्रसारित होंगे, दिल्ली से आप सुनेंगे 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 10:10 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती, 11:00 का समय होगा रंग तरंग का, 12:00 आप सुनेंगे यादों की महफिल, दोपहर के 1:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर, 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती जिसमें आप सुनेंगे सुरीला सफ़र, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 2:00, 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में, 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती जिसमें आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:55 पर, 3:00 आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में मन चाहे गीत, 3:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से नाट्य तरंग, 4:00 हम चलेंगे रांची जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर हम चलेंगे विविध भारती से बॉम्बे टाकीजा सुनने, 5:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का, 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत, शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम मेवाड़ी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम 6:30 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे रांची से विज्ञापन प्रादेशिक समाचार 7 बजे। 7:10 पर आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे स्वरांजलि गीत के श्लोक का कार्यक्रम बेगम अख्तर की आवाज़ में। विज्ञान जगत का समय होगा 7:45 पर। 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से चित्रपट। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9 बजे। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 10 बजे का समय होगा रजनीगंधा का। 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर। और हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं राग रंग शास्त्रीय संगीत बांसुरी वादन।

0: पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी

0: के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस: इंडिया एंड द यूएई साइन स्लू ऑफ एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप स्ट्रेटेजिक

0: एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा। देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प। बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत धनबाद के एसएनएम, एमसीएच और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाकर 250 की जाएंगी। इस परियोजना के लिए कुल 375 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रांची में आयोजित पर्यावरण कार्यशाला में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। उन्होंने घोषणा की कि देश की 147 बंद खदानों का कायाकल्प कर वहां फलदार पौधे लगाए जाएंगे और मछली पालन होगा। बाद में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार पर कोयला चोरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया।
1: पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, जितना सपोर्ट मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है और आम जनमानस को भी परेशानी हो रही है कि जितना ताकत के साथ हमको समर्थन मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, लेकिन कोयला मंत्रालय इस पे मंथन कर रहा है कि हम अपनी फोर्स, अपनी ताकत और बढ़ाएं जिससे हम चोरी रोक सकें।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस सिलसिले में 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी और मृत मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए भाजपा के बूथ स्तरीय एजेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
2: राज्य में ऐसा यहाँ का काम अर्थात मतदाता यहाँ की पुनरीक्षण सूची बनाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के जो वोटर लिस्ट बने हैं, इस वोटर लिस्ट में अनेक ऐसे नाम शामिल हो गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, जो नाम शामिल है वो या तो मृत पाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम इसमें जुड़े हुए हैं जिनका संशोधन करना बहुत जरूरी है।
0: इधर कांग्रेस भी एसआईआर को लेकर तत्पर है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर के एजेंटों यानी बीएलए की नियुक्ति जल्द पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है।
3: एसआईआर के काम को सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे और सभी को जिम्मेदारी अलग अलग प्रमंडल की दी गई है। हम समझते हैं सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक दो दिन में हम लोग दौरा का कार्यक्रम बना रहे हैं और हर जिले में जो हमारे बीएलए बने हैं उनसे बात करेंगे।
0: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज करेंगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग दें। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि हादसे के 4 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची

0: इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के चैंबर भवन में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड को खनिज समृद्ध औद्योगिक पावर हाउस बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक साझेदारी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। समाहरणालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिना आईडी कार्ड के कर्मी को शो कॉज करने और कुष्ठ पीड़ितों के लिए बोरिंग कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सदर अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों का हाल जाना और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
1: सदर हॉस्पिटल रांची के पेशेंट से भी हम लोगों ने बातचीत की है और अटेंडेंट से भी। साफ सफाई के मामले में अच्छा मेंटेन किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स के भी और स्टाफ के भी अच्छा सुविधा है। यहाँ जांच जो हो रही है सीटी स्कैन का, एमआरआई का, अल्ट्रासोनोग्राफी लगभग जीरो पेंडेंसी है, उसी दिन रिपोर्ट भी आ जाती है।
0: दुमका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा चुटोनाथ धाम के पास वन विभाग ने एक भव्य बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इस चुटोनाथ पार्क का उद्घाटन जामा विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत पार्क में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को पेड़ पौधों और बोटानिकल पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी।
2: बाबा चुटोनाथ के नाम से यह पार्क बना है, उनको समर्पित करते हुए इस क्षेत्र को निश्चित रूप से बड़ा सौगात मिला है। सभी का स्वास्थ्य के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए भी यह पार्क एक अहम भूमिका निभाएगा।
0: दुमका से दिल्ली के बीच सीधा रेल संपर्क आसान बनाने के लिए नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई है। यह ट्रेन 22 मई से प्रत्येक शुक्रवार दुमका से आनंद विहार के लिए रवाना होगी। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने इसे संताल परगना के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए केंद्र सरकार की सराहना की है। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोहरदगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज से दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज बीएस कॉलेज स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और बैडमिंटन के कड़े मुकाबले होंगे। वहीं कल सुबह 6 बजे नए समाहरणालय से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फुटबॉल और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, चार वर्षों में पेट्रोल डीजल के दाम में पहली बार सरकार ने की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड हाईकोर्ट में 18 मई से होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी 3 बेंच। हिंदुस्तान के अनुसार आंधी और बारिश के बीच ठनका से राज्य में 7 मरे। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसमें धार भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने दो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा, देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प। बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए समर्थवान है, चलते रहेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनाते हैं फिल्म बेवफा सनम का ये गाना।

0: और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म शक्ति का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: पलामू।

जोहार प्लामो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। आज हमारे सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र होता है। जी हाँ, जब तक हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी परीक्षा कोई भी कार्य करने में असफल हो जाते हैं। तो हमारे जीवन के लिए धैर्य जो है एक सफल मूल मंत्र है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम। तो आज का अधिकतम तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 28 डिग्री। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पल हमको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहेंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। तो हम आज बातें करेंगे चुकंदर की, जो हमारे बीट रूट्स जो हमारे शरीर में किस प्रकार से फायदे पहुँचाते हैं। तो चुकंदर आयरन, फोलेट, नाइट्रेट और विटामिन सी से भरपूर और सुपर फूड है। यह प्राकृतिक रूप से हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और स्टेमिना में सुधार करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खून की कमी को दूर करने में आयरन और फोलेट शरीर में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में आगे आता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट नसों को जोड़ा जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और उच्च रक्तचाप कम होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को सुधारता है। एथलीट और वर्कआउट करने वाले लोग स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका जूस पीते हैं। चुकंदर लीवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे मौजूद फाइबर, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। खून साफ करने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। इसके सेवन का जो तरीका है वो इस प्रकार से कि इसे आप सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं, जूस बनाकर भी पी सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह और इसके पोषक तत्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी स्वास्थ्य के प्रति हमारे शरीर में चुकंदर के क्या गुण हैं और किस प्रकार से हमें फायदे देते हैं। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते ही प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का, संयोजक थे श्री एस के लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो आज हम आपको फिल्म संगीत में सुनवाते हैं फिल्म साजन के कुछ नगमों को।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम से हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।

0: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour, aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. Later, the news organization officially withdrew the report and deleted the post regarding it from social media handles. In a social media post, the leading news outlet acknowledged that the report was inaccurate and expressed regret over the error. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post results.

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, यह चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था।
इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई। आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें

इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर

चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला? चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो ये

भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रैवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की

0: किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कित

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
0: रंग तरंग
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन अड्डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफ़र पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था। चलिए इस गीत का ही एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलित दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की आवाज़ शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी। और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, 10 नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एकत्रित इंडिया रिजर्व

0: बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्श का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब जब हम तुमको

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों के महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपने ट्यून
1: वहीं
0: किया है देश
1: समाचार
0: का
1: के
0: सब।
1: साथ मैं लवली निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: If you have heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

0: money laundering case linked to a 2008 land deal in Gurugram's Shikohpur village. The matter has now been listed for further hearing on 10th of July. Vadra appeared before the Rouse Avenue court in compliance with the summons issued to him after the court had taken cognizance of the Enforcement Directorate's prosecution complaint filed under the Prevention of Money Laundering Act. The case relates to alleged irregularities in a land transaction involving 3.53 acres of land. In Andhra Pradesh, six women daily wage workers died after a speeding tipper lorry rammed into a group of labourers in Kakinada district this morning. The accident occurred near Kovuru Bridge in Kakinada rural mandal when the workers were crossing the road to reach a work site. Expressing shock over the incident, Deputy Chief Minister K. Pavan Kalyan said the state government would provide compensation of 4 lakh rupees to the families of the deceased. He also instructed officials to implement safety measures at employment guarantee work sites located near highways and busy roads. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nuruzzuddin and Ghosh Zefei in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans in Kolkata this evening at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा नर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाटों के लीज आवंटन के लिए नया आदेश जारी किया है। सचिव अरवा राजकमल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जिलों के उपायुक्तों को लीज निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। झारखंड सैंड माइनिंग नियमावली 2026 के तहत सभी वैधानिक स्वीकृतियों के बाद ही लीज डीड पर अंतिम फैसला होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने बोकारो में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस नीति के कारण जनता उसे नकार रही है।
2: कांग्रेस का पूरी तरह से मुस्लिमीकरण हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने कि सारे मुसलमान के दम पर ही हमको आगे की राजनीति करनी है। पुष्टिकरण की राजनीति से जनता ने अब अपने आप को बाहर निकाल लिया है, हकीकत को पहचान लिया है। सभी लोग अब विकास के एजेंडे पर मोदी जी के साथ आकर के जो प्रोग्रेसिव लोग है उभरना शुरू कर दिया।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांग बुरु दिसोम मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि संताल समाज की परंपरा और आस्था का अपमान किया जा रहा है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड इस समय गंभीर पर्यावरणीय और जल संकट का सामना कर रहा है। रांची में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने झारखंड को समृद्ध बनाने के लिए यहां की प्रकृति और संस्कृति को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता बताई है।
3: यहाँ की कल्चर और यहाँ की नेचर, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लानिंग करनी होगी और इन दोनों के

0: रक्षण और संरक्षण के लिए साझे कार्यक्रम चलाने, इस राज्य को वैसा विकास करना है तो फिर यहाँ की कल्चर और नेचर दोनों को इंटीग्रेट करके काम होगा तो राज्य समृद्ध राज्य होगा।
1: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्यभर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। दुमका जिले के काठीकुंड के युवा संजय पाल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाली 13वीं इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 21 से 24 मई तक होने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में वे वैश्विक शांति, सुरक्षा और कूटनीति जैसे विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। संजय का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर हुआ है। रांची सदर अस्पताल में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों में जागरूकता बढ़ाने तथा आयरन सप्लीमेंट वितरण को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा स्थित डायवर्सिटी पार्क का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधायक समीर मोहंती ने यहां 18 दो मंजिला कॉटेज का निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक परियोजना से जहां स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सैलानियों को बेहतर आवासीय और प्राकृतिक अनुभव मिलेगा।
2: मानो समुझा में बेहतरीन पार्क बना रहे हैं, बहरागोड़ा में पार्क बना रहे हैं, कनेसर पहाड़ में सीढ़ी बन रहा है, वहाँ भी सुंदरीकरण का काम होगा, गोटा जिला का सुंदरीकरण हो रहा है, खड़ी डोरी का सुंदरीकरण हो रहा है, जालघोड़ा थान में हमने पिकनिक स्पॉट बना दिए 4 करोड़ का, और कॉटेज इसलिए बना रहे की बहरागोड़ा में होटल का व्यवस्था नहीं है, बाहरी लोगों का आना जाना भी है। पार्क को बेहतर ढंग से अगर बनाएंगे और कॉटेज बना देंगे तो बाहर का लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा।
1: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द कई नई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें 10 रुपए में चाय कॉफी देने वाला उड़ान यात्री कैफे, किड्स प्ले जोन और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल शामिल हैं। इन किफायती और आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन आगामी 20 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू करेंगे। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के सालतोला गांव में 26 किसानों ने 6 एकड़ जमीन पर सामूहिक खेती कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। क्लस्टर मॉडल के तहत ये किसान एकजुट होकर करेला, तरबूज और भिंडी जैसी नकदी फसलें उगा रहे हैं। इस आत्मनिर्भर प्रयास में स्थानीय महिला किसान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। राज्यभर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। पाकुड़ और हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
3: बट ब्रिज का जैसे दीर्घ आयु होता है, हम लोग भगवान से ही मनोकामना करते हैं कि मेरे हस्बैंड का भी बट ब्रिज के जैसा ही दीर्घ आयु लंबी उम्र प्राप्त हो। बांस का पंखा और बांस का डाली, ये दोनों शुद्ध होता है, इसीलिए ज्यादा यूज होता है।
1: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से स्वच्छता और सतर्कता अपनाकर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जल जमाव को रोकना और समय पर इलाज कराना इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। मानसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में

0: वर्ष मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। केरल में इसके 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद 5 से 6 जून तक इसके झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। यदि यह पूर्वानुमान सटीक रहा तो राज्य में पिछले साल की तुलना में मॉनसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। एथलेटिक्स। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में 22 से 25 मई तक 29वें नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इस बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के रेफरी, कोच और एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा मॉनसून दस्तक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से

0: रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है, तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं, तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है, अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

0: कब आता है, जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें कब आता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना, उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं, बताइए हमें गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं श्रोता, जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है, जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई, या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्म पत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और

0: रुकन पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। ये भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक

0: पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत

0: महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म बादल से ये गाना। आवाज अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरूला और अनमोल मल्लिक।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितनी

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांगबुरु दिसम मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संताल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझी थान के लिए अविलंब एक नायके को नियुक्त करने की मांग की है।
1: सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करें, इस दिसम मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे, जो प्रत्येक दिन इसकी सेवा सेवा करे। अब दोबारा फिर हम आएंगे तो हमें यहाँ नायके मिलना चाहिए, नहीं तो जब कभी भी मधुबन आएंगे इस प्रकार बंद रहेगी, इस ताला को हटा करके और समाज से आग्रह कर तो इस क्षेत्र के जितना भी गांव प्रधान लोग हैं, मांझी बाबा लोग हैं, सबको बुला के कहेंगे कि भाई एक आदमी को तुम लोग नायके यहाँ नियुक्त करो।
0: प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ मुखर है। पार्टी ने आज से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर उदासीन है और अन्नदाताओं की राज्य में घोर उपेक्षा हो रही है। राज्य सरकार विकास समेत जनकल्याण के मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस भी आंदोलन की राह पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस विषय को लेकर पार्टी ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत कई जिलों में आज प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर नेता और कार्यकर्ता आंदोलन के लिए जुटे हैं। आज रांची के बिरसा चौक पर भी पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। झारखंड उच्च न्यायालय में 18 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की 3 बेंच अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीम राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही है। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य भर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
2: सब महिलाओं पूजा कर रहे हैं, अपना पति के लिए लंबे उम्र के लिए पूजा कर रहे हैं,
3: आयु के लिए।

0: घर की खुशहाली के लिए, जिसे अखंड सौभाग्य पाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र और पावन पूजा माना गया है।
1: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से

वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील, ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।

0: तपस्वियों का आदेश शिरोधारे है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
1: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
2: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
2: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
1: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
2: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
1: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
2: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
1: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
2: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहां शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
1: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
2: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
1: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
2: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
1: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वह लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा।

0: नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
1: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
2: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है री।
1: परिहास ना कर।
2: अच्छा नहीं करती, बता।
1: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं
2: तेरी तरह।
1: फिर परिहास।
2: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
1: हाँ बता।
2: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
1: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
2: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
1: अच्छा,
2: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
1: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
1: अरे अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
2: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
1: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
2: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना,
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
1: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
2: अब बैठ भी जा।
1: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
2: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
2: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
1: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
2: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
3: बहुत मीठा है इसका गला,
2: करती रहती है सबका भला,
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
2: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
3: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
2: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
3: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
2: किंतु क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
2: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
1: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
2: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?

0: ही कैसे जाओगी? हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
1: वृक्षों को सींचने का ऋण?
2: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
0: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
2: आप
1: ये लीजिए
2: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
0: आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
2: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
0: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चुंचल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
4: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
0: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
4: चलो शकुंतला।
0: चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: हे भगवान, तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो। दो
0: हैं? वो कैसे?
1: बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो।

0: तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
3: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
3: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
0: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
0: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
0: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
5: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
5: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, खुद समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
4: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
4: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
4: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
5: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
4: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
5: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: भारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अंशुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण? कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार? उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।

0: आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
1: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
1: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: क्या शकुंतला,
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव के तीन अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांग बुरुदी सम्मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संताल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझी थान के लिए अविलंब एक नायिके को नियुक्त करने की मांग की है। जामताड़ा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संकलित करने का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में एसडीएम अनंत कुमार ने पालाजोरी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 14 जून तक चलने वाले इस कार्य के लिए प्रगणकों की टीमें राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में गुमला, खूंटी और रांची के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर।
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था। तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। एखादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखन में शो था और उनका प्रोग्राम है, तो उनके गाने का जाहिर है। लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना, दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी,
2: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें, तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें
2: बहुत।
1: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा।
0: नहीं
1: वाह, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ, अरे वाह, ये
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा, तो मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का,
0: अच्छा,
1: और कुछ करने का नहीं। मतलब अच्छा, आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माई गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगे?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ,
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: मेरा खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, अच्छा।
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे,
0: हाँ,
1: और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी जी जी
1: कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया,
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
0: अच्छा,
1: एक
0: कटआउट
1: बहुत
0: बनाया
1: बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ।
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, तो पत्रे का बनाया था
0: जी जी जी
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम
1: है,
0: रहा है,
1: ऐसा
0: अच्छा
1: लगता
0: अच्छा
1: था,
0: अच्छा
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
0: हाँ
1: कि उसको
0: बिल्कुल
1: रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात क्या
1: लेकिन
0: बात,
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: उसको
0: जी
1: बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा
0: हाँ
1: गाना गा, फिर वो शांत हो गया
0: क्या बात
1: आदमी
0: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
1: जी
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में, गांव में शोज
1: हाँ
0: किए
1: जी
0: हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी
0: हर शहर का श्रोता अलग होता
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
0: हाँ
1: अनुभव से
0: हाँ
1: आपको मालूम होना चाहिए
0: हाँ
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
0: जी जी
1: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सांप के

0: हमने ये कर दिए।
1: अच्छा,
0: फिर दो गाने के बाद ये गाना कुड़ा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के
1: अच्छा
0: नहीं आती बात।
1: अच्छा अच्छा
0: और जहाँ तक हम पहली बार भी गए
1: हाँ
0: किसी शहर में, किसी
1: हाँ
0: गांव में, छोटे से गांव में भी,
1: जी जी
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस
1: ओहो
0: प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता
1: हाँ।
0: था
1: और
0: समझ।
1: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
1: अच्छा
0: है अच्छा
1: हाँ हाँ
0: लगता था,
1: हाँ
0: क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे।
1: पसंद आता
0: पहला बमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते
1: जी
0: थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफी साहब का गाना एक दुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो वो
1: जी
0: आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब पहले शुरू करते
1: जी
0: थे,

0: रहेगा फिर जानी इसकी और परसों भी रहेगा और तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पुना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ,
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है
1: बहुत फर्क है,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी जी
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
0: जी
1: थी।
0: जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी जी
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगड़ धींगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मोरार्ची को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी है,
0: क्या
1: दूसरा
0: बात है।
1: कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल, शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
1: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियलिस्ट है मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी जी
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया।
0: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपना स्टाइल
1: जी
0: होता है।
1: एकदम
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया,
1: समझ,
0: सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ जी
0: बेगम जी के
1: हाँ जी
0: प्रस्तुत,
1: हाँ
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर अब आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूं
0: किन
1: कहूंगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने जमाने के जो कॉम्पोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ अभी
0: अच्छा
1: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये
0: हाँ समझ में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे जरा
0: जी
1: भी।
0: जी
1: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचिरे गाना,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा
1: हाँ तो नंदूरवार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते एक आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन

0: सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने, मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था। तो नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो। लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
1: तो श्रोताओं
0: वे
1: की समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाते हैं।
0: गाने
1: जी जी
0: बराबर उनको ए
1: बिल्कुल,
0: करके चिल्ला देते वहां से।
1: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
0: हाँ,
1: सुना
0: वो
1: है, तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं।
0: अब ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर
1: हाँ
0: टर वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए उधर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों
1: जी, ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी।
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा
1: अपना
0: करते।
1: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल,
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से।
1: जी
0: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको
1: हाँ
0: गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
1: सिंगर,
0: होता,
1: हाँ
0: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
1: हाँ
0: सालों साल तक।
1: जी
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
1: हाँ
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे तो बदली हो जाएगा
1: जी जी
0: नाजी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
1: जी
0: उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात।
1: क्या बात,
0: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
1: हाँ
0: म्यूजिशियंस,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है, तो
1: अच्छा
0: ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल,
1: बिल्कुल,
0: तो एक रिहर्सल और शो।
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मन के बोलूंगी, विनय मन के,
1: विनय मांडके,
0: विनय मन के।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि
0: और
1: बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ
1: हाँ
0: बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने, और
1: अच्छा
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्मर होता है,
1: जी
0: वो था बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे
1: हाँ हाँ
0: किसी को
1: हाँ
0: तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आ गया।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर हैं
0: एक गाना था अन्ना
1: जी,
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली,
1: ओह
0: कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी। मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा
0: मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे वो।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो,
1: जी
0: किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाता
1: जी
0: था
1: जी
0: उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी जी
0: था,
1: जी
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें,
0: जी
1: उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पाड़वा के शो में,
1: ओहो
0: वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान, और जो कुछ
1: जी
0: विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी,
1: जी
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी
1: हाँ
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली
1: बिल्कुल
0: सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी
1: हाँ
0: गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: नहीं
1: अच्छा
0: आए। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसं भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं,
1: ओहो
0: कसं करता? म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है,
1: हाँ हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाता है मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि
1: हाँ
0: हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं,
1: हाँ
0: पूरा मालूम थी
1: मालूम था उनको, क्या
0: उनको
1: बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता
0: जी
1: जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने
0: जी
1: अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी हाँ
1: हैं,
0: जी
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगी?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ा
0: लावणी
1: ला
0: है,
1: पिकला
0: पाड़ा ला पिकला
1: अम्बा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में
1: हाँ
0: शामिल
1: होती,
0: होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत ही
0: था।
1: जरूरी था,
0: हाँ
1: मस्ट।
0: हाँ हाँ
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर जरूर
0: और
1: जरूर।
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: அருகே படால பிக்கலை அம்பா, அளவை படால பிக்கலை அம், ஒனிட்டுவாக படால பிக்கலை அம்பா. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी, पर फिर ये गाना तो वंसोर होता ही था
1: जी जी,
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी, अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर, अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उनको भी शायद ताला.
1: जी प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: थी. हाँ,
1: और अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना थोड़ा सुनाती हूँ.
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब
1: कोशिश
0: गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा नसीब।
1: गुजराती तो वही गाना था।
0: हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर नो गाएंगाओ।

0: पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर,
1: ओ
0: इतना कॉन्शियस हो गया। और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे
1: जी जी
0: उसमें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी बिल्कुल
0: बोलना।
1: बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे
1: हाँ
0: इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी चाहता
1: जी
0: है, पे पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो
1: हाँ
0: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी। उनके
1: अच्छा
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ
1: करके।
0: जी हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
1: जी
0: मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है
1: करम,
0: कि आज आप यहाँ पधारी
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेरे
0: और
1: लिए भी
0: इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे
1: जी।
0: अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध
1: जी
0: भारती के तमाम सुनने वालों की ओर
1: जी
0: से
1: जी
0: हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: धूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: जाने कितने

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स में आज भारतवंशियों को संबोधित करते हुए भारतीय हॉकी की सराहना की। श्री मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच सजोड मारिजने के हॉकी विकास के प्रति उनके समर्पण की भी प्रशंसा की। उन्होंने हॉकी के प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे इस वर्ष के अंत में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आयोजित होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला

इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया। होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से पदयात्रा निकालकर समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्री महतो ने अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज एमबीबीएस के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिसे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

इटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर? खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा,

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत के सुरीले सफर में कुछ और नगमे होंगे इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

को संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक।

दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल पर, साथ ही चर्चा में सुनिएगा सब्जियों के रोग एवं बीमारियां। भेंट वार्ता आप सुनेंगे एक सफल किसान से, केचुआ पालन पर भेंट वार्ताकार हैं सुरेश प्रसाद प्रजापति, जोरकट पलामू से भेंट करता हैं संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 6:30 से।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल का प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। आज की फनकारा हैं बेगम अख्तर। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान जगत। आज का शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमता। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।

शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवा।

आज की युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत दोस्तों आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं आप बाखैर होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। यही हमारी कामना रहती है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों इस कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे पवित्र विचारों में परमात्मा का वास होता है, और इसी कार्यक्रम में अपर्णा सिन्हा की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा शिक्षा के उद्देश्य, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। दोस्तों बहुत समय पहले एक निर्दयी राजा था। ईर्ष्या, लालच और अहंकार उसमें फूट कूट कर भरा था, लेकिन वो ईश्वर का बहुत बड़ा उपासक था। सुबह से शाम तक वो ईशिन वंदना में घंटों लगा रहता था। अक्सर वो राजमहल में संतों के विशाल भोज का आयोजन करता। ईश्वर भक्त और आस्तिक के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, प्रजा भूखों मरने लगी। अंततः संतों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निकुंड के पास में एक चिराग प्रकट हुआ एवं भविष्यवाणी हुई कि जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा उपासक होगा वही इस चिराग को प्रज्वलित करेगा एवं तभी बारिश होगी। कई लोग आए एवं निराश होकर वापस हो गए। जो भी अग्नि लेकर चिराग के पास आता अग्नि बुझ जाती। अंततः राजा स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए चिराग की ओर चला। संपूर्ण प्रजा कहती थी कि ये चिराग तो हमारे महाराज के लिए ही पृथ्वी पर आया है एवं वही इसे प्रज्वलित करेंगे। उस दिन भारी भीड़ थी। लोग अपने राजा को चिराग जलाते देखने को चले आते थे, पर ज्यों ही राजा ने अग्नि के को चिराग की बाती से स्पर्श किया अग्नि शांत हो गई। राजा शर्मसार हो गया। सभी लोग हतप्रभ थे। कारण पूछने पर एक संत ने राजा को बताया, राजन केवल ईश्वर के भजन से कोई उसका उपासक नहीं हो जाता। ईश्वर के सच्चे उपासक बनना चाहते हो तो अहंकार, ईर्ष्या, लालच, व्यभिचार जैसे बुरे विचारों से दूर रहो, भोग विलास त्यागो एवं अपने अंदर पवित्र विचारों का उदय करो, अंतकरण शुद्ध रखो। तब कहीं जाकर राजा की आंखें खुली। अंततः संत के बुलाने पर एक गरीब किसान डरते डरते चिराग तक पहुंचा और चिराग को प्रज्वलित किया। एक घोर गर्जना हुई और बारिश होने लगी। प्रजा की खुशी का ठिकाना न था। वो गरीब किसान अधिक पूजा अर्चना तो नहीं करता था, लेकिन उसका अंतकरण स्वच्छ एवं निर्मल था। कथा हमें संकेत करती है दोस्तों कि पवित्र विचारों में न केवल परमात्मा का वास होता है बल्कि उनमें सफलता का सच्चा रहस्य भी छिपा होता है। केवल पूजा अर्चना करने से कोई परमात्मा का प्रिय नहीं बन जाता। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। अर्थात जब तक आपके मन में काम, क्रोध, मद एवं लोभ के विचार हैं, तब तक किसी विद्वान एवं मूर्ख में कोई भी अंतर नहीं होता। पवित्र विचार मानव के सबसे बड़े सहायक होते हैं दोस्तों। एक विद्वान ने कहा था कि पवित्र विचार बुरे समय में भी व्यक्ति को सद्मार्ग दिखाते हैं, जबकि बुरे विचार अच्छे समय में भी व्यक्ति का सुख एवं चैन ही छीन लेते हैं और जहरीले डंक मारते रहते हैं। पवित्र विचारों से व्यक्ति में उत्साह का संचरण होता है, आशा की ज्योति प्रज्वलित होती है एवं अंतरात्मा पवित्र रहती है। व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है एवं आत्मविश्वास की शक्ति उसके लिए अंत प्रेरणा का कार्य करती है। वो निर्भय एवं साहसी बन जाता है। वो हर तरह की विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न रह सकता है। दोस्तों इमर्सन का कथन है, आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से बढ़कर है, विचार ही विश्व पर शासन करते हैं।
विचार से अधिक ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। दोस्तों, पवित्र विचारों को मन में रखने से जो सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति को होता है वो ये है कि उस स्थिति में उसका मानसिक संतुलन इतना अच्छा हो जाता है कि वो जो भी सोचता है, विचार करता है, सदैव अच्छे परिणाम ही देते हैं, क्योंकि उत्साहपूर्ण एवं हर्षित मन से किया गया विचार कभी निष्फल नहीं जाता। दोस्तों, आपके विचार जितने अधिक पवित्र होंगे, परमात्मा आपको उतना ही अधिक प्रेम करेंगे, आप में उतनी ही अधिक अलौकिक शक्तियों का विकास होगा। दोस्तों, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। उनकी एक चर्चित कहानी है मंत्र। कहानी में एक डॉक्टर चड्ढा हैं जो वृद्ध भगत के बेटे का इलाज करने से केवल इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि इस समय वे गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं। भगत का बेटा मर जाता है। समय गुजरता है। डॉक्टर के भी एक बेटा ही कैलाश को सर्प काट लेता है। वो उसे बचाने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन आशा की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इधर ये खबर भगत को जब मिलती है तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब ये स्वार्थी डॉक्टर उसके बेटे की जान की परवाह ना करते हुए खेलने चला गया था। वृद्ध भगत ने आजीवन लोगों की निस्वार्थ सहायता की थी मगर उस दिन भी उसका मन जहाँ चड्ढा की बर्बादी पर खुश होना चाहता था वहीं अंतर्मन उसे वहां जाकर उसके बेटे को ठीक करने की प्रेरणा देता था। अंततः अंतर्मन की जीत हुई। भगत भागता हुआ चड्ढा के बंगले पर पहुंचा और मौत से जूझ रहे उसके बेटे को स्वस्थ कर दिया। जो कार्य कई डॉक्टर एवं बड़े बड़े लोग ना कर पाए थे वही कार्य भगत ने कर दिखाया था। उसके अंदर निस्वार्थ मदद करने का जो पवित्र विचार था उसी के फलस्वरूप परमात्मा ने उसके मंत्रों को इतनी शक्ति दी कि विषैले नाग के जहर को उतारने में भगत सफल हो गया। दोस्तों, याद रखें, सफलता के मार्ग को आसान बनाने के लिए परमात्मा में आस्था आवश्यक है एवं परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए मस्तिष्क में पवित्र विचारों का होना जरूरी है क्योंकि पवित्र विचारों में परमात्मा का वास होता है एवं परमात्मा में आस्था रखने वालों को भला कोई सफल होने से कैसे रोक सकता है। दोस्तों, मन को उज्ज्वल एवं पवित्र बनाए रखने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के शब्द बेहद सहायक हो सकते हैं। सभी धर्मों के महान संस्थापकों ने मानव को जो भी ज्ञान दिया है उसमें सफलता के बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हैं और छिपी हुई है सघन ऊर्जा। इसलिए अच्छे श्लोक या किसी अच्छी पंक्ति का जाप करने से हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही कुछ सकारात्मक क्रियाएं घटित होने लगती हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन हमें आत्मिक बल एवं बुद्धि प्रदान करते हैं। आप जितना अधिक अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं आपका मस्तिष्क उतना ही अधिक क्रियाशील एवं पवित्र हो जाता है। अच्छी पुस्तकें आपके हृदय को प्रभावित करती हैं। प्रसिद्ध विद्वान कैंपिस ने कहा था, आप अपना कोट बेचकर भी अच्छी पुस्तकें खरीदें। कोट के बिना जाड़े में शरीर को कष्ट होगा किंतु पुस्तकों के बिना तो आत्मा ही भूखी तड़पती रहेगी। महान व्यक्तियों की यही विशेषता रही है दोस्तों कि वे सदैव अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनमें पवित्र विचारों का अभाव कभी ना रहा। पवित्र विचारों में तो स्वयं परमात्मा निवास करते हैं अतः उन्हें सफल होने से कैसे रोका जा सकता था। वे सभी महानता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। उनकी ख्याति आज तक जन समुदाय में सुशोभित है। दोस्तों, हमेशा दूसरों की भलाई की सोचिए। खुश रहना है तो दूसरों की खुशहाली की कामना करना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जब व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनोविकार से स्वतंत्र होता है तो उसका मान

मानसिक स्तर स्वतः ही पवित्रता की ओर गतिमान होता है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि केवल अपने लिए तो पशु तक नहीं जीते, वे भी अपने बच्चों का यथाशक्ति पालन करते हैं। परोपकार की भावना फलदायी होती है दोस्तों। आत्मा, परमात्मा एवं परोपकार के विचार व्यक्ति को निर्भय, साहसी और शक्तिशाली बनाते हैं। व्यक्ति की यही विशेषताएं उसे सफलता के बेहद करीब लाकर खड़ा कर देती है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति में स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बुरे विचार आते हैं तो वे उसके आंतरिक संतुलन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति भंग होती है बल्कि कार्य क्षमता भी घटती जाती है। इसी तथ्य को भारतीय ऋषियों ने पहचाना और कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सारे व्यक्ति देखें एवं किसी को भी दुख न हो। यही तो वो भाव है दोस्तों जो कहता है कि सभी से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो। जो तुम्हें बुराई दे तुम उसकी भी भलाई करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें प्रेम करेगा। संत कबीर ने समूचे ज्ञान का सार प्रेम को बतलाया है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और रहीम ने सचेत किया है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अर्थात प्रेम के धागे को इस प्रकार मत तोड़िए जिससे सामने वाले के हृदय पर गहरा आघात पहुँचे, क्योंकि प्रेम का धागा एक बार टूटने पर फिर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। लोक में यही उक्ति प्रचलित है कि जो घाव जो है गोली से बनता है वो तो भर जाता है, लेकिन कठोर शब्दों एवं बुरे व्यवहार से भरा घाव आसानी से नहीं भरता। यदि भर भी जाता है तो हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाता है। आप जितना दूसरों से प्रेम करेंगे, उनकी खुशहाली की कामना करेंगे, जीवन में आप उतने ही अधिक सफल होते जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध लेखक स्वेट मार्टिन को कौन नहीं जानता। उन्होंने सदैव मनोपयोगी साहित्य की रचना की। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जबकि बेहद कठिन परिस्थितियों में जकड़े गए, वो प्रेम में असफल हुए एवं कई तरह की मुसीबतें ने उन्हें परेशान किया, पर फिर भी उन्होंने सभी की भलाई की में कार्य करने की उत्सुकता दिखाई। आज उन्हें सारी दुनिया जानती है क्योंकि वे आशा और प्रेम के सहारे सफलता के अत्यंत ऊँचे सोपान पर जा खड़े हुए। तो दोस्तों हमेशा मन में अच्छे विचार रखें और अच्छा गुमान रखें तो इसका आप देखेंगे कि परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये हुई कुछ बातें, चलिए इसी से जुड़ी आपको एक इसी प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अपर्णा सिन्हा की वार्ता। विषय है शिक्षा के उद्देश्य।
1: शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा मनुष्य के जीवन का वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह केवल पढ़ना लिखना सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और समाज में सम्मान के साथ जीने की राह दिखाती है। यदि हम इतिहास के पन्ने को देखें, तो पाएंगे कि जिन समाज ने शिक्षा को अपनाया है, वह तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह समझता है और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण है।

0: भूमिका निभाती है। एक शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जब देश के नागरिक शिक्षित होते हैं, तो वे बेहतर निर्णय लेते हैं, नई नई खोज करते हैं और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति और प्रतिस्पर्धा के इस दौरान में बिना शिक्षा के आगे बढ़ना लगभग असंभव है। शिक्षा हमें कोई नई तकनीकों को समझने और उनका सही उपयोग करने में क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा शिक्षा हमें नैतिक मूल्य से भी जोड़ती है। यह हमें ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता और सम्मान जैसे गुण सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने बल्कि समाज के लिए एक आदर्श बनता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है। जीवन के हर अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए हमें हमेशा सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। गरीबी, संसाधनों की कमी और जागरूकता के अभाव इसके मुख्य कारण हैं। हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, ताकि कोई भी अज्ञानता के अंधेरे में ना रहे। कहा जाता है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाता है। अगर जीवन एक रास्ता है, तो शिक्षा उस रास्ते की दिशा है। बिना शिक्षा के जीवन बिना रोशनी के दीपक के समान है। जरा सोचिए, अगर समाज में शिक्षा ना हो, तो ना विकास होगा, ना समझ होगी और ना ही प्रगति संभव है। इसलिए कहा गया है, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।
1: एक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षित नागरिक ही देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। शिक्षा सामाजिक बुराइयों जैसे अंधविश्वास, अशिक्षा, भेदभाव, गरीबी और अपराध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है।
0: आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शिक्षा को केवल अधिकार नहीं, बल्कि सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। सही अर्थों में शिक्षित समाज ही विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकता है। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अपर्णा सिन्हा की वार्ता। विषय था शिक्षा के उद्देश्य। और दोस्तों, इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने आज पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके बाद उपायुक्त ने गांव पहुंचकर अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानी में हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इसे लेकर आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप

0: उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिससे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कार्यक्रम में समसामयिक कृषि कार्य की। आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है और हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। गरज चमक के साथ तूफान और बिजली गिरना, तेज़ हवाएं, ज़मीन पर तेज़ हवाएं चलेगी और फसलों का गिरना और फलों का टूटना भी। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी सब्जियों की फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें और वर्षा के पश्चात मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खरपतवार, फसल अवशेष और पॉलीथीन शीट का प्रयोग करें, क्योंकि तापमान बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ इस नमी का उपयोग नए फसल लेने के लिए भी कर सकते हैं। धान की फसल में जल जमाव बनाए रखें, इसके लिए मेड़ों को तंदुरुस्त रखें। आम, अमरूद, लीची के नए बगीचे के लिए समतल जमीन पर वर्गाकार या आयताकार गड्ढा, कलमी आम के लिए 8 मीटर बाई 8 मीटर और 10 मीटर बाई 10 मीटर, आम्रपाली के लिए 5 मीटर बाई 5 मीटर और लीची के लिए 8 मीटर बाई 8 मीटर की दूरी पर पौधे की रोपाई करें।
1: जिन किसान भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो, वे इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी और गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें और बीज डालने के बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। मक्का की बात करें तो तना छेदक कीट के प्रकोप इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो बचाव के लिए किसान भाई फ्री प्रोनील 0.3G या कारटॉप हाइड्रोक्लोरेट 4G का बुरका ऊपरी चक्र पर। फसल में बाहर निकलने की अवस्था में गंधी बग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। कीटों के हमले को नियंत्रित करने के लिए किसानों को शाम के समय मेलाथियन 50 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मिर्च के फसलों में पत्ती मोड़क विषाणु यानी पत्तियां सिकुड़कर ऊपर नीचे मुड़ जाती हैं और पीले पड़ जाते हैं, इस तरह के प्रकोप दिख रहे हैं तो सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलने वाला ये एक गंभीर रोग है। इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी और खेतों में पीले चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। प्रकोप अत्यधिक होने पर एमिडाक्लोरोपिट दवा 17.8 SL का छिड़काव 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।
0: अब बात करते हैं भिंडी की, तो भिंडी की ग्रीष्मकालीन बुआई के 30 दिन के बाद शेष 50 किलोग्राम यूरिया को 2 बराबर मात्रा में बांटकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। 50 किलोग्राम में से 25 किलोग्राम यूरिया मिट्टी में और शेष 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ फूल आने से पहले दें। अब बात करते हैं सेम की फली की, तो लतीदार फ्रेंच बीन्स फसल लेने के लिए जो इच्छुक

किसान भाई हैं उसकी उन्नत किस्में जैसे केंटकी वर्डर, स्वर्णलता का चुनाव करें। बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ लें और कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। गर्मी में तापमान बढ़ने, बादल घिरे रहने और जल स्तर का नीचे गिरने से तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना को कम करने के लिए पंप द्वारा जल को खींचकर तालाब में पुनः डालें और बांस द्वारा जल को पीटें। ऐसा करने से वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुलकर बढ़ जाती है। वर्षा के पानी को जमा करने के लिए जलीय अपने खेत के ढलान के निचले भाग में 10x10x10 आकार का गड्ढा यानी आप डोभा बना लें, जिससे संग्रहित पानी का उपयोग फसल में आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में किया जा सके। बंजर भूमि को उपयोगी बनाने के लिए फल वृक्ष या दरखत वाले पेड़ को लगाना चाहिए। जो किसान भाई इस वर्ष यानी बरसात में फल या लकड़ी के पौधे लगाना चाहते हैं, वे जगह का चुनाव कर वृक्ष के अनुसार दूरी को ध्यान में रखते हुए गड्ढा खोदकर छोड़ दें। तो किसान भाइयों, ये हुई बातें समसामयिक कृषि कार्य की और कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता एक सफल किसान जो केचुआ पालक है और भेंट वार्ताकार हैं सुरेश प्रजापति जो जोरकट पलामू के हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।

0: किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि हम आपको भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं केचुआ पालन के एक सफल किसान से। भेंटवार्ताकार है सुरेश प्रसाद प्रजापति, जो जरखट पलामू के रहने वाले हैं। बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान सुरेश प्रजापति, जो ग्राम जोरकट के रहने वाले हैं और मूलतः ये केचुआ पालन करते हैं। सुरेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार भाई।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि अगर हमारे किसान भाई केचुआ पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे।
2: देखिए, अगर किसान केचुआ पालन करना चाहते हैं तो जो तहे दिल से लगे हुए हैं खेती करने के लिए, उनको तहे दिल से गौ माता को जो गोबर होता है उनको गोड़ लगिए, पहला नंबर, यानी उसे फायदा लेना है। जितना दूध से नहीं फायदा होता है उतना गोबर और मूत्र से फायदा होता है। इसीलिए जैविक खाद बनाया जाता है और जैविको खाद में आपका केचुआ खाद महत्वपूर्ण खाद है, जो कि बहुत सस्ता बनता है। यही तो बात है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी किसान अगर खेती ढंग से करते हैं तो उनके यहाँ हर रोज पानी मांजन धोन में 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम को बर्बाद होता है। उसको पानी को जो है सो पका कर टब पर बनाए आते मांजन धोन हो और एक वो टब में जाए, जो कि गंदगी रहेगा वो पेंदे में बैठ जाएगा और फिर वो दूसरा अथी में जाएगा, जो कि उससे आपका पटवन भी हो जाएगा। जैसे केचुआ टंकी में पानी पटवन हुआ, पानी जो गंदा था वो पटवन हुआ, तो जब केचुआ टंकी से जो पानी जो निकला बूंद बूंद करके वो आपका बर्मी वास में बदल गया, यानी जो पानी गंदा बर्तन को साफ किया, हम नहाए धोए उसको साफ किया, उस पानी को हम उसमें डाल दिया तो केचुआ खाद से निकला तो वो बर्मी वास हो गया, जो एक रुपये लीटर भी कोई नहीं पूछता, जो कि 20 रुपये लीटर हो गया। और उसी प्रकार से केचुआ खाद भी आपका कम से कम 20 रुपये लीटर हो, 20 रुपये किलो हो जाएगा। और ऐसे तो दिनों दिन रेट बढ़ते जा रहा है, तो मेरा तो यही विचार है कि इसी तरह से लोग करें और लोग विकास करें। और
1: इसके लिए टंकी कैसे होना चाहिए,
2: हाँ,
1: कहाँ से आप केचुआ लाएंगे, इन सब बातों पर जानकारी।
2: हाँ, तो इसके लिए पहले उनको साधारण सा एक ईटा का जो है सो बनाना होगा, और नहीं तो सस्ता सुविस्ता वो ढलवा दे में। वो टंकी की आकृति ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ ढाल होना चाहिए, ढाल हल्का होना चाहिए जो कि पानी बह जाए और पानी जो है सो निकल जाएगा। निकलने से होगा क्या कि वहाँ पर केचुआ को मैंने बर्बाद होने नहीं देगा, पानी जमने से केचुआ मर जाते हैं और उसमें हवा लगते रहेगा, है ना। इसीलिए केचुआ का बल्कि भीतरी सतह जो है ना वो ढलैया न हो, खाली ईंट का जुड़ैया हो और बाहरी से उसका प्लास्टर भी हो, जिससे कि होगा कि जब पानी की कमी होगा तो आपका वो केचुआ दीवार से भी चिपक के अपना जीवन बसर कर लेता है। इस तरह से केचुआ टंकी का ढलान हो और केचुआ जो लाना है तो केचुआ वर्ल्ड में 3,500 प्रजाति हैं, जिसमें कि झारखंड में सबसे अच्छा सरवाइव करने के लिए आपका आइसिना फटीडा है, जो आपका गुलाबी कलर का होता है और 3 इंच तक लंबा होता है, खूब हुआ तो, और उसको एक दिन बाद करके वो जो है सो आपका अंडा देती है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से केचुआ का विकास होता है और केचुआ खाद का विकास होता है और केचुआ का बनाया जाता है, बनाने की एक विधि है। सर्वप्रथम जो टंकी बनाया जाएगा उसका नीचे जो है सो आपका ईंटा का बिछा दिया जाता है फर्श, जो कि जालीदार होता है, हवा लगता है, और उसके ऊपर बांस रखा जाता है और उसके ऊपर फिर जो है सो आप 3 इंच तक मोटा, 4 इंच तक मोटा आप पत्ता अधसड़ा डाल दीजिए, कि वो केचुआ को होगा का कि जब उतना मोटा रहेगा 3-4 इंची, तो जब केचुआ ऊपर चर चोंच लेता है माने भोजन कर लेता है तो आराम करने के लिए वहाँ जाता है घर में।
1: अच्छा।
2: और फिर जैसे मछली तैरते हैं ना उसी प्रकार से वो अपना चारा चौथा और खाया पिया और अपना घर में रह लिया और उसके बाद आराम से रहता है। तो इस प्रकार से केचुआ का विकास होता है और उसके ऊपर गोबर पत्ता का मिश्रण दिया जाता है जो कि देखिए कि आपका केचुआ को चलने में दिक्कत ना हो। साथ ही इतना भी ध्यान देते हैं कि उसमें नीम का पत्ता मिले तो और अच्छा है कि मैंने रोग से बचाव करता है। इस प्रकार से और बहुत से पौधे हैं जैसे कि आपका ये सेनुआर का पत्ता देख रहे हैं, बेल का पत्ता देख रहे हैं, धधूर का पत्ता, इस तरह से जितना जो बेकार लगते हैं ये बहुत कीमती पौधे हैं। जैसे कि तुलसी में 7 तुलसी होते हैं तो उसमें एगो मरुआ होता है जो कि उससे आपको दवा बनता है आपका ये खटमल मारने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत से औषधीय पौधे हैं जो कि ऐसा।
1: कितना उत्पादन कर लेते हैं?
2: देखिए उत्पादन तो हमारा साल में 80-90 क्विंटल हो जाता है और जो कि कुछ सेल होता है और मैं अपना खेत में डालता हूँ।
1: इसका प्रशिक्षण अगर हमारे किसान भाई लेना चाहें तो क्या करेंगे?
2: हाँ, इसके लिए चियां के फार्म से संपर्क करें, KVK JRS दोनों से संपर्क करें।
1: कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, क्या क्या सुविधा दी जाती है?
2: ऐसे तो एक सप्ताह का है, लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग को वहाँ से पाने के बाद अपने घर पर नहीं निकाल पाएगा खाद एक बार तक, तो कभी कभी लोग फेल भी कर जाते हैं। योग्य अगर प्रशिक्षक के अभाव रहा तो फेल कर जाते हैं, और नहीं तो कितना लोग तो मैंने निकल भी जाते हैं कि देखिए जो अपने हाथ से ट्रेनिंग में जो कर लिए देख लिए साइट पर, तो ट्रेनिंग करने का मतलब है कि साइट पर भी अपने जाइए और अपने हाथों से कीजिए।
1: अच्छा, उसका उपयोग आप लोग कहाँ पर करते हैं जो आपका वर्मी वास जो होता है?
2: और वर्मी वास जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 लीटर जो वर्मी वास हुआ उसमें 4 गुना पानी मिला के, कहीं 3 गुना कहीं 5 गुना, देखते हैं कि पौधा जो है सो कितना सर्वाइव कर रहा है और देख लेते हैं कि इस जमीन में इतना ताकत है। 3 गुना वाला अच्छा हुआ कि 4 गुना वाला कि 5 गुना वाला, तो उसमें उतना ही हम लोग डोज देते हैं। जैसे कि रोगी को बच्चा रोग को अलग डोज दिया जाता है, सियाना को अलग, वृद्ध को अलग, तो उसी प्रकार से हम लोग जमीन में ताकत देख के तब देते हैं। ऐसा नहीं कि
1: मतलब बहुत कड़ा होता है।
2: हाँ, कड़ा होता है, इसलिए 3 गुना 4 गुना 5 पानी मिला के हम लोग यूज करते हैं उसको। वर्मी वास को ऐसे पानी मिला के उसमें करते हैं

0: हक जड़ कर देते हैं और नहीं तो फिर ऊपर से स्प्रे भी करते हैं, कीटनाशक का भी काम कर देता है। इसलिए कि उसमें सभी पत्ताओं का जो है सो रस आया हुआ रहता है और खाद का तो गुण है ही, इसीलिए वो कीटनाशक का भी काम करता है।
1: अच्छा, हमारे किसान भाई को इस वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये जानकारी?
0: हाँ, किसान को वर्मी कंपोस्ट से पहला नंबर तो देखिए, जल जंगल जमीन जगत प्राणी को बचाना है तो जैविक खाद अपनाना है। तो इससे फायदा ये होता है कि जो भी उससे पैदा होता है शुद्ध होता है। अब जैसे कि जो कुछ भी हम खाते हैं पैदा करके उत्पादन करके, अब जैसे कि गाय का जो है सो दूध है, तो जो जंगल में चरती है और उसका जो घी जो बनता है गाय का दूध का, वो देखिए आपका 1500 रुपये किलो है और जो कि बहुत अच्छा होता है। उसमें आपका गुण ऐसा है कि आपको दीर्घायु बना देगा, दिमाग अच्छा रखेगा, माने शारीरिक भी विकास अच्छा होगा और बौद्धिक विकास भी आपको अच्छा होगा, ये चीज़ होता है। अच्छा, साथ ही ये तो खाने पीने की बात हुआ, दूसरा नंबर अगर मान लें कि जैविक खाद से अगर उत्पादित औषधीय पौधा है, एक साधारण सा चीज़ हम बताते हैं कि अगर किसी को पथरी हो गया है तो एक पत्थर चूर पौधा है, उस पत्ता को अगर जूट के बोरा में नमी करके अगर हम घर में भी बंद कर दें तो उससे पौधा उग जाता है। पत्थर चूर का उपयोग करते हैं जो कि ठीक हो जाता है,
1: औषधीय पौधा। आप थे सुरेश प्रजापति, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और केचुआ पालन पर जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: इसके लिए सभी को नमस्कार हो और मेरा विचार सभी किसान भाइयों तक पहुँचे और इसे लोग अवश्य करें।

0: अभी आप सुन रहे थे एक सफल किसान सुरेश प्रजापति से ली गई भेंट वार्ता, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और कार्यक्रम में अब बातें सब्जियों के रोग एवं बीमारियां की।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में मुख्य रूप से कवक, जीवाणु और विषाणु जनित रोग होते हैं। इनमें डैम्पिंग ऑफ, झुलसा जो ब्लाइट रोग भी होता है, पाउडरी मिल्ड्यू या मोजोक सबसे आम है। कृषि विशेषज्ञ अक्सर इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग और उचित जल निकासी की सलाह देते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र पतन की। नर्सरी में इसके जो लक्षण हैं वो आपको बता दें। नर्सरी में छोटे पौधों की जड़ें और तना गल जाते हैं, जिससे पौधे मुरझाकर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीज बोने से पहले उन्हें ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। खेत में जल भराव ना होने दें।
0: अब बात करते हैं झुलसा रोग की यानी ब्लाइट की। तो इसके लक्षण हैं टमाटर और आलू में विशेष रूप से पाया जाता है, और पत्तियों और फलों पर भूरे या काले धब्बे पड़ जाते हैं और पौधे झुलसे हुए प्रतीत होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पत्तियों को सबसे पहले आप नष्ट कर दें और मैंकोजेब का छिड़काव सबसे पहले आप करें। अब बात करते हैं चूर्णिल आसिता की यानी पाउडरी मिल्ड्यू की। तो इसके लक्षण हैं पत्तियों, तनों और फूलों की सतह पर सफ़ेद पाउडर यानी आटे जैसा फैल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में पर्याप्त धूप और हवा का संचार बनाए रखें, घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। मृदु रोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यो। इसके लक्षण हैं पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर पीले धब्बे और निचले हिस्से पर फफूंद यानी बैगनी या भूरे रंग की दिखाई देती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और मेटालेक्सिल का छिड़काव करें। एक और रोग है, वो है मोज़ेक रोग। इसके लक्षण है पत्तियों में पीलापन और धब्बेदार मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है। पत्तियां मुड़कर छोटी सी हो जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे, यह बीमारी रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी या माहू से फैलती है। इनके नियंत्रण के लिए इमीडा क्लोरोपीड का इस्तेमाल करें। जीवाणु मिलानी यानी बैक्टीरियल विल्ट की बात करते हैं, तो इसके लक्षण जो है वो पौधे अचानक मुरझा जाते हैं और तने के अंदर का भाग भूरा हो जाता है। यह बैंगन, टमाटर

किसान भाइयों, हम बात करते हैं सब्जियों में समेकित रोग प्रबंधन की। तो झारखंड में अधिकांश जमीन ढालू एवं पठारी है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होने के कारण यहाँ पर सालों भर सब्जियों की खेती होती है, लेकिन कई सारे सब्जियाँ हैं इसमें कई तरह की समस्याएं, जैसे कीड़ों और रोगों के प्रकोपों के फलस्वरूप 10-30% हानि भी होती है और कभी कभी 100% फसल इसे बर्बाद भी हो जाते हैं। उग्र रूप धारण करने पर रोगों पर नियंत्रण पाना कठिन होता है, वहीं पैदावार और गुणवत्ता पर प्रभाव भी पड़ता है। बैंगन की फोमोसम एवं अंगमारी रोग और मिर्च और सेम वर्गीय फसलों में एंथ्रेक्नोज घातक बीमारियां हैं, जो बीज को संक्रमित कर अगली फसल को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए आवश्यक है कि इनका निदान उचित समय पर किया जाए। अनुशंसित मात्रा से कम रसायनों का प्रयोग जहाँ रोगों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, इसलिए कीटनाशक अथवा रोगनाशक दवाओं का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। व्याधियों से राहत पाने में समेकित प्रबंधन की आवश्यकता है, जो कुछ हम बता रहे हैं इस बात पर ध्यान दें। ऐसे प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, अगेती रोपाई करें, व्यवहारिक नियंत्रण यानी कल्चरल कंट्रोल, गर्मी के मौसम में खेत की जुताई करें, पलवार यानी मल्चिंग द्वारा खरपतवार को नष्ट करना और खेत की नमी बनाए रखना, उचित समय पर पानी का प्रयोग और अधिक पानी के उचित निकास का प्रबंध करना, जैविक पोषक तत्वों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना, खेत में करंज और नीम की खली का प्रयोग करना, वनस्पतिक पदार्थों जैसे नीम, तुलसी, पुटुस, करंज, सरसों इत्यादि की पत्तियों के घोल के प्रयोग से बीमारी और कीड़ों की समस्याओं को कम करना, अनुशंसित फसल अपनाना, रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा कर जल देना या जमीन में गाड़ देना, भूमि शोधन करना, जैविक फफूंदी नाशक जैसे ट्राइकोडर्मा, संजीवनी, कालीसेना और जैविक कीटनाशक जैसे BTA BV का प्रयोग। विभिन्न प्रकार की सब्जियों के रोगों के लक्षणों की जानकारी आवश्यक है और इसके रोकथाम के उपाय भी आवश्यक हैं।

पात गलन या आद गलन यानी डैम्पिंग ऑफ, या टमाटर, गोभी, मिर्च, मूली, गाजर, सलजम के नर्सरी में गलने वाले एक मृदाजनन फफूंद जैसे पीथियम और राइकोजोकनानिया से होता है। इसके लक्षण दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली अवस्था में अंकुरित बीजों का जमीन की सतह से निकलने के पूर्व ही पौधा गल जाता है, और दूसरी अवस्था में बीज अंकुरण के 15 से 20 दिनों के अंदर जमीन की सतह से पौधों का गलना इसका मुख्य लक्षण है। चूर्णिल आसिता की बात करते हैं तो यह रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, लौकी, करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम, मटर, भिंडी, फ्रेंच बीन, बोदी, सेम, टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके लक्षण में सफ़ेद मटमैले, पाउडर नुमा फफूंद का पत्तों और पत्र वृंतों या फलों पर उपस्थित होना मुख्य है। रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे मटर के अर्का अजीत, CHP MR1, CHP MR2, DP 9411, DPP 9414, JP 72 और खीरा के स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण अगेती झारखंड के लिए जो है वो सबसे उपयुक्त है। बात करते हैं डॉनी मिल्ड्यू यानी मृदी रोमिल आसिता की, तो यह कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे गोभी परिवार के पौधा और पौधशाला के नवजात बिछड़ों या खेतों में बड़े पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर कपास की तरह सफ़ेद मटमैले रंग के फफूंद का आक्रमण, पत्तों की ऊपरी सतह पर काले पीले धब्बों का अनगिनत समूह होता है। एक और रोग है मुरझा रोग, यह एक जीवाणु जनित रोग है जो सोलनेसी परिवार की सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू में लगता है। इनके

0: परमाणु मृदा में रहते हैं। और इसका प्रकोप गर्मी, बरसात में ज़्यादा और जाड़े के मौसम में कम होता है। इसका मुख्य लक्षण फूलने के समय पौधों का अचानक मुरझाकर सूख जाना, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसकी पहचान आसानी से तने के कटे भाग से दूधनुमा स्राव को पानी में देखकर की जा सकती है। रोग प्रतिरोधी किस्मों से उत्पादन की बात करते हैं तो टमाटर की स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का वरदान, बीटी 17, शक्ति एली 79, बीटी 10, बीटी 18। संकर किस्मों में अर्का श्रेष्ठ और अर्का अभिजीत जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्मों की पहचान की गई है। इससे उत्पादन कर लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार बैगन की स्वर्ण श्री, स्वर्ण मणि, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, अर्का निधि, अर्का केशव या अर्का नीलकंठ BB7, BB11 और BB44 रोग प्रतिरोधी किस्में हैं।
1: बात करें झुलसा की तो अगेती अंगमारी में फफूंदजनित रोग है जो टमाटर और आलू फसलों में मुख्य रूप से होता है। इस रोग के आरंभिक लक्षणों में पत्तों और तनों पर काले भूरे रंग के 1-2 संकेंद्रीय धब्बे बनना और रोग की उग्रता की स्थिति में अग्नि धब्बे बनना है। उग्रता की स्थिति में धब्बों का एक दूसरे से मिलकर झुलसा जैसा फैलता और पत्तियों का पीला बढ़कर झड़ना पाया जाता है। इसके काले भूरे रंग के धब्बे फलों पर भी दिखाई पड़ते हैं, जिसे काफ़ी नुकसान होता है। पिछेती अंगमारी रोग की बात करें तो ये फफूंदजनित रोग है जो टमाटर और आलू फसलों में मुख्य रूप से लगता है। इस रोग के लक्षण में पत्तों के किनारों से काले रंग के जलसित धब्बे पाए जाते हैं, जिसे पत्ता झुलसा जाता है। तनों और कच्चे फलों पर जलसित धब्बे पाए जाते हैं, जिनसे बरसात के मौसम में सड़न प्रारंभ होती है और काफ़ी नुकसान होता है। फोमोपिसस झुलसा भी एक रोग है। यह बैंगन के मुख्य फफूंदजनित रोग है। यह रोग ग्रस्त बीजों से फैलता है। इसमें नर्सरी से पत्तों पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तने और पत्तों पर मटमैले भूरे गोलाकार धसे धब्बे पाए जाते हैं और पत्तों का पीला पड़ना पाया जाता है। फलों पर धब्बा सड़न पैदा करता है। इसमें सड़े और सूखे भागों पर पिननुमा अनेकवाकृतियाँ दिखती हैं। बैंगन की बीज उत्पादन की फसल के लिए विशेष रूप से क्षतिकारक बीमारी है।
0: एक और रोग है एंथ्रेक्नोज या काल सूखा रोग। यह फफूंद जनित रोग है जो टमाटर, मिर्च, बैंगन, कद्दू और दाल कुल की सब्जियों में पाया जाता है। इनके भूरे काले रंग के धब्बों पत्ते और फलों पर पाए जाते हैं और पत्तियों का झड़ना और फलों का आकार बिगड़ना इनके मुख्य लक्षण हैं। तो ये हुई बातें सब्जियों के रोग और बीमारियाँ की, और हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार
2: और साथ ही रागनी कुमार।

0: का भी नमस्कार।
1: किसान भाइयों, आज सबसे पहले बात करेंगे 16 मई 2026 दिन शनिवार को स्थानीय डाल्टनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी में आयोजित 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की गोष्ठी पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन करता है संतोष कुमार, प्रस्तुति है श्री संजीव कुमार लाल की। सबसे पहले यह रेडियो रिपोर्ट सुनिए।
2: तमाम किसान भाइयों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे स्थानीय डाल्टनगंज स्थित कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी में 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की गई। बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर पीके सिंह, सहायक निदेशक प्रसार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर निरंजन लाल, साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी पलामू दीपक कुमार वर्मा, वरीय वैज्ञानिक सह अधिष्ठाता गढ़वा कृषि महाविद्यालय डॉक्टर अरविंद कुमार, सहायक निदेशक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी डॉक्टर अखिलेश कुमार, जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर उदय कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं पलामू जिले के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्यगण और कृषक सदस्यों की उपस्थिति गोष्ठी में देखी गई। जी हाँ किसान भाइयों, समिति की गोष्ठी में बीते वर्ष 2025-26 में कृषि के क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धता और आगामी वर्ष 2026-27 में कौन कौन से कार्य कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं, इन विषयों से संबंधित जानकारियां कृषकों के बीच आदान प्रदान की गई। कृषकों के साथ उनकी समस्या पर बातचीत, बीज वितरण संबंधी समस्याओं पर बातचीत, कम वर्षा में खेती की तकनीक, मौसम में असमानता को देखते हुए फसलों का चुनाव, मृदा क्षरण, पलायन, बाजार व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, प्रस्तुत है उस गोष्ठी का संपादित अंश।
3: कृषि विज्ञान केंद्र एक नॉलेज टैंक, इसमें कोई दो राय, इसको भुनाने के लिए जो हमारा किसान भाई है और हमारे पदाधिकारी हैं, यदि सहयोग लेना चाहते हैं तो भरपूर सहयोग लेते हुए और हमारे किसान भाइयों का भला कर सकते। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत मेहनत कर रहा है, मैं अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी 15 साल इसमें काम किया है, रिसर्च में भी काम किया है और भी काम किया और टीचिंग में भी काम किया। तो अपनी बात तो हम लोग सभी कह लेते हैं, फिर भी हमें महसूस होता है कभी कभी दूसरी लेवल पर मैंने काम किया है कि करनी और कथनी का बड़ा फर्क हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं और हमारे सबका एक मोटो है, अल्टरनेटिव मोटो जो गोल है वो यही है कि हमारे किसान का कैसे भी भला हो, किसी भी हालात से भला हो, कुछ दे के भला हो प्रोडक्ट के रूप में, कुछ भला ऐसा है जो ज्ञान के रूप में, ज्ञान का जो भला होगा उनका वो चिरस्थायी होगा, लंबा चलेगा, और प्रोडक्ट का जो दिया हुआ चीज है वो कुछ समय के लिए ही हो पाए। तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के हम जिले के पदाधिकारी और हमारे कृषि विज्ञान के अधिकारी मिलजुल कर एक तालमेल ऐसा बना लें कि हमें क्या देना है, जो हमारी अभी परियोजना है या हमारी क्रियान्वृत्ति का जो प्रोग्राम कार्यक्रम बना है उसके साथ आपकी और हमारी भागीदारी इन लोगों के बीच में क्या हो सकती है, यह भी हमें सोचना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसान मुझसे पीठ पीछे कुछ भी कहता हो, अच्छा भी कहता है, बुरा भी कहता है कभी कभी, पर हमें यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। अभी हमारे कुछ किसान आए हुए हैं जो डॉक्टर साहब ने मुझे बातें बताई हैं, उनको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। यदि आपके यहाँ पर कोई किसान कोई पशु बीमार है, यदि आपकी गाय गर्मी में आ रही है, यदि आपका इस बारे में तो आपको जानी चाहिए कि पेट में कीड़े भी होते हैं, तो यदि अच्छी बात है कि यदि तो पता है कि कीड़े होते हैं पेट में, कीड़े हमारे भी होते हैं, है ना, ऐसे ही बकरी के भी हैं, गाय के भी हैं, अच्छा कुछ किल्लियाँ होती हैं, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि चारा कम पकड़ते हैं, कम खाते हैं, है एनोरेक्सिया कहते हैं उनको, तो उसके लिए भी आप परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा तो जानवर खा ही नहीं रहा है। तो इन सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब ने जो कहा है 1962 नंबर पर, ऐसे यही है 1962 सत्यपाल फोन है, आप सब थोड़ी थोड़ी पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादा भी पढ़ी लिखी है, 1962 नंबर पर फोन कर दीजिए, ठीक है 1962 फिर लिख लीजिए, 1962 फोन करेंगी तो वहाँ पशुधन विकास अधिकारी होंगे।

0: लैंडस्लॉट ऑफिसर्स होंगे, वो आपके द्वार आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे आपके द्वार पर।
1: और ग्रामीण भाइयों, हम आपको यह भी बता दें कि हमारे बहुत से ऐसे कृषक भाई बहन हैं जो कृषि के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। उनमें से एक ऐसी महिला कृषक भी हैं जो नील गाय जैसी समस्या जो हमारे पलामू जिले में देखी जाती है, उस नील गाय से अपने खेत को कैसे सुरक्षित करती है, इस संदर्भ में इन्होंने गोष्ठी में अपनी बातें रखी। केवल ब्रह्मास्त्र बनाकर जैविक परंपरा से इन्होंने नील गाय से अपने खेतों को सुरक्षित किया।
2: हम कहा किए कि निमास्त्र बनाए, निमास्त्र बना के और उसको उपयोग के छींटे, तो अगल बगल के भी रहर बुनाया था और मेरा भी बुनाया था। तो हम कहा किए कि अगल बगल के मतलब बता रहे थे, बाकी उस समय वो लोग नहीं समझे, हाँ नहीं समझे। और हम कहा किए कि बना के घर पे ही और छींट दिए रहर के, तो छींटे तो नील गाय डेली डेली आ करके उसको खा रहा था, उसको आके दूसरका के खा के ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो हम सोचे कि अब तो हमरों में घुस जाएगा, तो हम जब तक ला नहीं मारे थे तब तक ला हमरों में थोड़ा आरी में खा गया। तो हम सोचे कि अब तो मारेंगे दवा, ये तो खा रहा है, तो हम ऐसा किए कि मार दिए दवा। अब आ रहा है नील गाय, बाकी खा नहीं रहा है, हाँ उसमें घुस रहा है बाकी खा नहीं रहा है, हाँ नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे हम मतलब अभी सर के बोले कि देखिए ना सर, ये दवा के तो हम नहीं जान रहे थे कि इतना इसमें गुण है, तो देखिए हम रहर बचा लिए, नहीं खा रहा है। अब नहीं खाया, अभी हमको रहर वो अगल बगल के सब खा के ख़त्म कर दिए, किसी को नहीं बचा, हाँ बाकी हम बचा लिए निमास तरह डाल के ही, आठ रोज पर डलता ही रहगा। और अभी देखिए कि आज भी सुबह हम रहर पीट के आए हैं, वो रहर जो इतना अच्छा हुआ है, हाँ हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहर हुआ था। सबको अगल बगल के बता रहे थे, बोल रहे थे कि सबका खा गया, आपको कैसे बचा हुआ है, हाँ कैसे बचा हुआ है। तो हम लोग मीटिंग करते हैं, सबके प्रशिक्षण देते हैं कि जैसे इसे हम लोग का करना है, दवा बनाना है, तो यही दवा से हम लोग बचाए हैं, आप भी बचाइए। तो आओ, आसपास के भी करेला लगाए थे, और पालक लगाए थे, धनिया लगाए थे, गोभी लगाए थे, वो लोग दीदी के बोले कि जे दीदी ये वाला डाल के देखिए थोड़ा, हमारे तो रहर बच गया, आपका बचता है कि नहीं बचता है। वो भी दीदी लेज के डाले, और लेज के डाले तो आ रहा है, मतलब पैर से तो खाना रहा है ना, बाकी मुँह से खा नहीं रहा है, हाँ खा नहीं रहा। आते आते वो छोड़ दिया कि जब खाने के नहीं मिल रहा है तो नहीं जाएंगे।
3: बहुत बढ़िया
1: जी। हाँ श्रोताओं, और आज के इस गोष्ठी में उपस्थित पलामू जिला के जिला कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार वर्मा विचार व्यक्त करते हुए,
4: आज कृषि विज्ञान केंद्र पलामू में जो आज बैठक हुई जिसमें हमें शामिल होने का मौका मिला, और जो मेन जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो अहम भूमिका होती है वो ये होता है कि जितने भी रिसर्च हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर पर जो रिसर्च होता है, उस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान का केंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है।
1: जी बिल्कुल।
4: मतलब कि यदि एक प्रोग्राम होता है कि लैब टू लैंड, मतलब लैबोरेटरी में जो चीज़ें बन रही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे, उस टेक्नोलॉजी को लैंड तक कैसे ले जाएं, किसानों के खेत तक कैसे पहुंचे, इसका जो माध्यम है इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का ही सबसे बड़ा अहम रोल होता है।
1: जी बिल्कुल।
4: और ऑफकोर्स यहाँ पर इनके पास रिसर्च भी होता है, यहाँ पे फार्मर्स आते हैं, खुद अपने आँखों से देखते हैं उस टेक्नोलॉजी को, समझते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं, और फिर जाकर अपने अपने खेतों में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तभी ये सफल माना जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी उसी दिशा में काम कर रही है, और हम चाहेंगे कि इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से करें, पलामू के परिप्रेक्ष्य में करें। थोड़ा सा ये ड्राउट का एरिया आता है, तो इसके लिए थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें, किसानों को खास करके जो फलदार पौधे हैं हॉर्टिकल्चर के तरफ उनको मूव करना चाहिए, वेजिटेबल ग्रोथ में करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई टपक सिंचाई का इस्तेमाल करके कैसे अच्छा से अच्छा खेती की जा सके,
1: पानी की स्थिति भी बहुत,
4: तो ये इन सब टेक्नोलॉजी का उपयोग होना ही पड़ेगा, तभी पलामू का किसानों के लिए भला हो पाएगा। और इसमें एक बात है कि धीरे धीरे मतलब उनको केवल धान की फसल पे नहीं डिपेंड होकर के इन फसलों की तरफ मूव करने की जरूरत है, ताकि ये उनका प्लांटेशन तो ऐसा है कि एक बार हो जाने से 10 साल 15 साल 25 साल तक चलता है,
1: चलता रहेगा,
4: तो एक परमानेंट उनका सोर्स ऑफ इनकम रहेगा किसान का। बाकी जो निचला एरिया है उनका, निचला खेती है, उसमें वो लोग खेती करें, धान का करें या जो भी है सीजनल खेती,
1: वो आसानी से कर सकते हैं,
4: लेकिन तो उनको उनका कभी नुकसान, ड्राउट की स्थिति बनती है तो एकदम से उनको नुकसान नहीं होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम उनका बना रहेगा।
1: जी
4: यदि ये क्रॉप फेल भी कर गया तो उतना ज्यादा चिंतित होने की हो सकता नहीं हो।
1: आप कार्यक्रम से जुड़े सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: धन्यवाद
1: जी। हाँ, ग्रामीण बंधु सह निदेशक प्रसार शिक्षा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर निरंजन लाल आज की इस गोष्ठी में कृषकों को संबोधित करते हुए आज के संदर्भ में हमारे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे?
3: किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि कृषि विज्ञान केंद्र एक ज्ञान केंद्र के साथ साथ एक नॉलेज टैंक है। जैसे पानी का टैंक होता है उसी तरीके से ये एक नॉलेज का ज्ञान का एक केंद्र वो है टैंक। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है, पशुओं से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित, फूलों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित और बकरा बकरी गाय भैंस और आपका मशरूम और आपका बर्मी कंपोस्ट नेचुरल फार्मिंग, इस तरह की जानकारी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सभी किसान भाइयों को, जिले के सभी किसान भाइयों को मुहैया कराता है।
1: एक हब का कार्य करता है।
3: हाँ, एक हब का काम करता है। किसान भाइयों को जागृत होने की आवश्यकता है, कृषि विज्ञान केंद्र से एक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। बिना हिचक के बिना संदेह के कभी भी यहाँ आकर के जानकारी हासिल कर सकता है। समय अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को मिनी किट यानी कि कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराता है जिससे हमारा किसान लाभान्वित होकर खेती करके लाभान्वित होता है। और बातें बहुत हैं और हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। हमारी सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार।
1: किसान भाई बहन, आज की गोष्ठी के संदर्भ में कृषि विज्ञान केंद्र पलामू जिला के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रधान डॉक्टर राजीव कुमार।
5: किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र पलामू में आज 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से जो अनुसंधान के निदेशक हैं, कृषि महाविद्यालय गढ़वा के जो डीन हैं एसोसिएट डीन और जो प्रसार शिक्षा के जो सह निदेशक हैं, इनके अलावा ज़िले के जो लाइन डिपार्टमेंट के हैं, प्रगतिशील किसान हैं, एनजीओ एफपीओ और जिला कृषि पदाधिकारी आदि सभी उपस्थित थे। इसमें जो है वित्तीय पिछले वर्ष में जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी कार्य संपन्न हुआ उसको प्रस्तुत किया गया, उस पर जो है डिस्कशन हुआ और वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए जो कार्य योजना है उसको प्रस्तुत किया गया और उस पर जो है विस्तार से चर्चा हुई, किसानों से सलाह लिया गया, एफपीओ के प्रतिनिधि से लिया गया, बैंक के प्रतिनिधि से लिया गया, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे एक एक करके सभी ने अपने विचार व्यक्त किए कि जिला के किसान की भलाई के लिए क्या सुधार क्या आवश्यकता है और कैसे इसको प्रभावशाली बनाया जाए, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफ़ी सफल रहा। सभी किसान भाई और लाइन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी रांची से आए हुए पदाधिकारीगण सभी ने अपना अपना जो है तकनीकी सलाह केंद्र को दिए और दिए गए निर्देश का अनुपालन जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 में उसका किया जाएगा।
1: जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
5: नमस्कार और धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार पलामू जिला के स्थानीय डाल्टनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के प्रांगण में 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की गोष्ठी संपन्न हुई। ग्रामीण भाई बहन, आप सुन रहे थे पलामू जिला के स्थानीय डाल्टनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी में आयोजित 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम संकलन करता थे संतोष कुमार और प्रस्तुत करता थे संजीव कुमार लाल। दीजिए अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

किसान भाइयों, अभी आप रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। 16 मई 2026 को स्थानीय डाल्टनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी में आयोजित 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार

0: समिति की बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट था। संकलनकर्ता थे संतोष कुमार, प्रस्तुति श्री संजीव कुमार लाल की थी।
1: और कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक किसान जो है मधुमक्खी पालन करते हैं और भेंट वार्ताकार हैं शिवनाथ कुशवाहा जो गोंदा मिराल गढ़वा के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बातें करेंगे एक मधुमक्खी पालक शिवनाथ कुशवाहा जी से। मधुमक्खी पालन जैसे स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
3: नमस्कार, मेरा नाम शिवनाथ कुशवाहा है, घर गोंदा मिराल प्रखंड जिला गढ़वा के रहने वाले हैं। हम सब्जी के खेती करते हैं, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं।
2: आप कितने वर्षों से मधुमक्खी पालन के कार्य से जुड़े हुए हैं?
3: 5-7 साल पहले से जुड़े हैं और हमारे पास अभी 32-33 बक्सा है और इसे करते हैं और साल में लगभग 2.5 क्विंटल के लगभग मध निकालते हैं। मधुमक्खी भी बेचते हैं और उसके साथ मछली भी है और मशरूम भी करते हैं। ये सब चीज़ों से हमारा मैंने रोजी रोटी बढ़िया अच्छा चलता है। ये नौकरी के लिए चाहे ये किसी दूसरे पैसे के लिए उतना हमें परेशानी नहीं होता है। हम यही कहना चाहेंगे और किसान भाइयों को जो सुन रहे हैं कि ये सब मिश्रित खेती करेंगे तो इससे उन लोग का भी आय बढ़ेगा।
2: मधुमक्खी पालन की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली?
3: वो चियाकी से भी मिली और गढ़वा विज्ञान केंद्र से भी मिला।
2: अच्छा, दोनों से आप जुड़े हुए हैं।
3: जी,
2: इसके लिए आपने कहाँ कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है?
3: ये हम गढ़वा विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और एक यहाँ एक दो बार यहाँ चियाकी में आन के प्रशिक्षण लिए हैं।
2: अच्छा।
3: तो इससे हम सीखे और अपने पूंजी लगा करके तुरंत सीखे और अपने 5,000 पूंजी लगा करके 2 बक्सा खरीदे थे, उससे हमें ज़्यादा बक्सा हो गया, बढ़ गया।
2: अच्छा।
3: और कुछ बक्सा विज्ञान केंद्र गढ़वा से मिला।
2: अच्छा, मतलब 2 बक्सों से आपने मधुमक्खी पालन की शुरुआत
3: की।
2: अच्छा, किस प्रजाति की मधुमक्खी आप पाले हुए?
3: इटली के। प्रशिक्षण किए तो इसके बाद तुरंत हम अपने पूंजी लगाए, पहले अपना पूंजी लगाकर 5,000 का 2 बक्सा खरीदे, उससे 17 बक्सा हमारे पास मधुमक्खी तैयार हो गए, उससे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा हो गए। अभी हमारे पास मधुमक्खी 32 बक्सा मौजूद हैं और 1.5 क्विंटल करीब मिसाल भी मध निकाले हैं।
2: 5,000 रुपये की पूंजी लगा के आपने शुरुआत की इसकी।
3: जी।
2: अच्छा, मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होती है?
3: मधुमक्खी पालन के लिए पहले बक्सा होगा, मौसम के हमारे तुलसी जो है वो समय तुलसी की जहाँ फूल रहा है, जहाँ तुलसी का है उस जगह पर ले जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ ये चैत बैसाख जो है ना, अभी इससे पहले ये फरवरी में ये परास का फूल है, शीशम का फूल है, आपका सब्जी का फूल है, इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मध निकलता है तो यहाँ पर फिर ले जाना पड़ता है और उनको फिर बरसात में उन लोग का देख रेख के लिए चींटी न खाए या पानी से धूप में उन लोग का मरे ना, इस प्रकार से देख रेख करिएगा तो उससे अच्छा लाभ निकलते रहता है।
2: आपने बताया कि बहुत सारी विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है ना, कुछ और इसके बारे में बताइए।
3: इसके बारे में उन लोग का देखना पड़ेगा कि उन लोग का कोई कीड़ा उड़ा जिसे चींटी है वो न लगे, उसमें बीमारी कोई तरह का आता है तो उसमें सल्फर दिया जाता है, वो सल्फर दे दीजिएगा, एसिड दे दीजिएगा तो उससे बीमारी मुक्त हो जाता है।
2: अच्छा।
3: उन लोग बीमारी से राहत हो जाएंगे तो नुकसान नहीं होता। बीमारी के अलावा वही 2-3 को बीमारी होता है ज़्यादा उन लोग का।
2: गर्मी में क्या क्या सावधानी बरतनी?
3: गर्मी में मधुमक्खी के लिए अभी उन लोग का छांव में रखना पड़ेगा, कोई चीज़ का छांव जो है पौधा का उसके नीचे रखना पड़ेगा और जहाँ रस नहीं मिल रहा है वहाँ पर देख रेख करना पड़ेगा उसमें पराग है कि नहीं, उसमें अथी रस है कि नहीं। अगर यदि रस है, पराग है तो ठीक है, नहीं है तो चना का बेसन का उसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा अलग से।
2: अच्छा।
3: कि अलग कटोरी में करके रख देंगे, उसे उन लोग उठा लेंगे ताकि रानी का भोजन मिले।
2: अच्छा।
3: और बच्चा अंडा के लिए वो बरकरार रहेगा।
2: ज़्यादा गर्मी अगर तापमान से बढ़ जाता है तो और कुछ परेशानी होती
3: नहीं? और उन लोग के लिए परेशानी बस सबसे बड़ा उन लोग को बक्सा गर्म नहीं होना चाहिए, बक्सा को छाया मिलना चाहिए और जूट के बोरा से तोप देना चाहिए।
2: अच्छा, ठंडा करने के लिए उसको?
3: नहीं, ठंडा करने के लिए।
2: अच्छा, मधुमक्खी पालन की दिशा में भविष्य में आप क्या क्या योजनाएं बनाए हुए हैं?
3: हम भविष्य में सोच रहे हैं कि मधुमक्खी से कुछ आय निकल जाता है, कुछ मछली से निकल जाता है और कुछ मशरूम करते हैं उससे निकल जाता है, सब्जी से भी निकल जाता है। तीसरे सोच रहे हैं कि अगर यदि और किसान बड़े पैमाने पर लोग सोचे और करें ना तो किसान को उतना परेशानी नहीं होता है।
2: अच्छा,
3: एक साथ मिश्रित खेती करने, क्योंकि सब्जी का अगर करते हैं तो उसका रेट गिर जाता है लेकिन ये मधुरस का रेट नहीं गिरता है, इससे भी निकल जाएगा कुछ, उससे निकल जाएगा, इससे हम लोग किसान को

0: आगे बढ़ने में सहयोग मिल जाता है।
1: अच्छा, आपने कहा कि मधुमक्खी पालन भी आप करते हैं, मशरूम पालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं, आपके अनुसार मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आप कैसा मानते हैं?
0: हम बहुत अच्छा मानते हैं,
1: इससे आपको साल भर में
0: किसान के लिए।
1: अच्छा,
0: जिसके पास जगह जमीन नहीं है वो भी बढ़िया से कमा के करते हैं।
1: अच्छा, हम खेतों की तरफ चलते हैं, खेतों में आपने क्या क्या लगाया है?
0: खेतों में लौकी है, नेनुआ है, करेली है, बोदी है, भिंडी है, टमाटर है, मिर्चा है, बैगन है, इस प्रकार से सब 15-16 आइटम का सब्जी लगाते हैं। प्रतिदिन 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल तक निकलता है,
1: मतलब उसमें भी आपको फायदा है।
0: जी जी,
1: है ना। अच्छा बताइए शिवनाथ जी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
0: हमारा परिवार में सब 6-7 को सदस्य हैं।
1: तो सबका पालन पोषण इससे हो जाता है?
0: इससे हो जाता है, बहुत खुशी से होता है।
1: और साल में आपकी बचत भी हो जाती है?
0: बचत भी हो जाता है, जो सब्जी से, मधुमक्खी से, सब से करके अपना सब परिवार का पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये 2 से 2.5 लाख साल में ये बचत भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: इसमें कोई दूर आय के बात नहीं,
1: फायदा ही
0: फायदा है। जी,
1: शहद बाजार व्यवस्था क्या होगा?
0: ये घर से 300 रुपए किलो की दर से सब ले जाते हैं हमारे यहाँ से।
1: अच्छा।
0: हमारे यहाँ पहले कम रेट था, लेकिन
1: ये मतलब किलो
0: 300 रुपए किलो के हिसाब से खाने के लिए, अपना बच्चा वच्चा के लहर, जिसे अभी गर्मी के समय लहर हो रहा है उनको खाने के लिए, जो बूढ़ा है वो उसमें किशमिश डाल के खाने के लिए इस प्रकार से लाते हैं, और दिक्कत हमको बाजार के लिए परेशानी नहीं पड़ता है।
1: जब से आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, पहले और आज में आप क्या फर्क पाते हैं?
0: फर्क ये पड़ता कि जिसे हम बेरोजगार हैं, तो आज हमारा मधुमक्खी से पहले नहीं जुड़े थे तो गरीबी तो कुछ था, लेकिन मधुमक्खी के साथ में जुड़ गए तो आय में सहयोगी आ गई, बढ़ोतरी हुई।
1: मौन की विशेष सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? ये साल भर का व्यवसाय होता है?
0: सालों भर का होता है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग किसान हैं, बाहर लेके नहीं जा पाते हैं, इसके चलते सब मिश्रित खेती जो करते हैं उसके चलते 2 बार निकालते हैं। एक बन तुलसी का निकालते हैं और एक अभी सरसों और सरसों का रस जो आता है उसे निकालते हैं रस। इसको लगाने में नहीं, हम चारों तरफ से खेती करते हैं और किनारे किनारे आर जो है ना, आर पर रख देते हैं, और 25-30 बक्सा हमारे पास है, 40 बक्सा हो जाता है, और बेच भी देते हैं, रखते भी हैं, उससे मने हमारा नुकसान कुछ नहीं होता है आय छोड़ कर।
1: जी हाँ, आप थे मधुमक्खी पालक शिवनाथ कुशवाहा, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, भेंटवार्ताकार थे शिवनाथ कुशवाहा और इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा वर्मा। और चलते चलते
1: आप पहले मौसम का मौसम बता दें आपको। आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री टेम्परेचर, न्यूनतम 27 डिग्री टेम्परेचर, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 52% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 15% रिकॉर्ड की गई।
2: और अब बातें चलते चलते आज की नसीहत में अंतर्वर्ती खेती से लाभ की।
1: अंतर्वर्ती खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है किसान भाई, जिसमें एक ही समय में एक ही खेत में मुख्य फसल के साथ कुछ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। इससे किसानों की कुल आमदनी में 20-30% तक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है और भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है।
2: तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
2: अनुमति।
1: नमस्कार। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव, 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद आज पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त ने गाँव पहुँचकर

0: साहू ने आज जमशेदपुर में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं को संगठन के विचारधारा, कार्य पद्धति और राष्ट्र सेवा के मूल मंत्र से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं में वैचारिक दृढ़ता लाने का कार्य करेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से हम पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और पार्टी से जुड़ करके हमारा विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम बोलते हैं पार्टी विद द डिफरेंस।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इसे लेकर आज रांची के अल्बर्ट चौक के समीप पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। जामताड़ा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संकलित करने का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में एसडीएम अनंत कुमार ने आज पलाजोरी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके सशक्त अनुश्रवण के लिए वरीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में जाकर सभी योजनाओं को निरीक्षण करते हुए कोऑर्डिनेशन का अभाव है उससे संबंधित उनको प्रतिवेदन हम लोग को देना है।
0: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज एमबीबीएस के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे।
3: थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए मन में क्या चल रहा था, और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है।
0: होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुई और समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर श्री महतो ने अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रांची की ओर से आज शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया, सरोद वादक पंडित मनोज कुमार केडिया और तबला वादक श्रीजीत चटर्जी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और आकाशवाणी रांची केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रण डीसी हेम्ब्रम समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया।
4: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूंगा, हर एक जज अपना अपना काम करे, लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है। हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान में। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं।
0: देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी के क्रम में मादक पदार्थों के 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से

0: करीब 20 किलोग्राम गांजा, मोबाइल, दोपहिया वाहन, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं।
1: एक के पास से एक जो एफजेड का मोटरसाइकिल है उसके बाइक से कुल 172 ग्राम गांजा बरामद हुआ, तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की रिकवरी।
0: धनबाद पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। जिले के नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिससे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में आयोजित किया जाएगा। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में वर्ष 2003 से 2007 तक के सभी पहलवान मेडिकल सर्टिफिकेट अथवा पेरेंटल सर्टिफिकेट के साथ भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव, 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जनगणना का काम जोर शोर से चल रहा है। डिजिटल जनगणना के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण कार्य को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इस पर बात की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
2: इसमें स्पेशल ये है कि पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें ऐसे कि दो चरण है, एक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना पहला चरण और दूसरा है जनसंख्या।
1: गांवों एवं शहर में व्याप्त पेयजल एवं विद्युत समस्या के निदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अनुग्रहित प्रसाद शाह ने।
3: आज पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और पूरे जिले में चापाकल बंद पड़े हैं। सौर ऊर्जा से संचालित जितने भी जलापूर्ति योजना है वो सब बंद पड़ा हुआ है। इसकी चिंता सरकार को न है न प्रशासन को है। शहरी जलापूर्ति योजना ये लंबे समय से चल रहा है इसका काम, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। जल तो आ गया शहर तक, लेकिन घर घर में अभी तक पानी पहुंचा नहीं। सरकार की उदासीनता के कारण ये धीमी गति से चल रही है। इसी प्रकार लिट्टीपाड़ा में जो महत्वाकांक्षी योजना है ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, वो महत्वाकांक्षी योजना जो रघुवर सरकार के समय में शुरू हुआ था, आज तक वो योजना बंद पड़ा हुआ है। वहाँ के आदिवासी पहाड़िया जनजाति लोग आज नाला नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और मिलों चलकर जाकर पानी लाते हैं।
1: बकाया वेतन भुगतान सहित कई मांगों को लेकर ऊर्जा मित्रों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य को सौंपा। इस पर बात की ऊर्जा मित्र दिवाकर चौबे ने।
4: 3 महीने के बाद ही हम लोग को पीए पर ऐसा मिलना चाहिए कि फिर भी कंपनी आज देंगे कल देंगे करते करते करते करते 22 महीना पार कर दिया और अभी पता चला कि ये लोग पीएफ देने के मूड में नहीं है और साथ साथ हम लोगों का पीएफ के बदले में एवज में हमारा वेतन भी काट लिया है।
1: महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री उपासना मरांडी ने।
5: आप ये भी नहीं कर सकती, सरकार की युद्ध के चलते गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। इनके मन में, केंद्र सरकार के मन में ये चोर जरूर था। तभी जब सारे राज्यों में हमारे चुनाव हो गए, उसके बाद जब रिजल्ट्स आ गए, सरकारें बन गई 22 हमारे राज्य में, पूरे देश में जब भाजपा की सरकार बन गई, तब इन्होंने ये नीति लागू की मई 1 को। जब सारे इलेक्शन खत्म हो गए और सीधे 993 रुपए का जो वृद्धि किया गया है वो बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त करने के लायक नहीं है ये वृद्धि। और साथ ही जो कमर्शियल जो सिलेंडर का किया गया है उसका कहीं ना कहीं बोझ जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो मध्य आय वर्ग के लोग हैं, उन पे पड़ेगा।
1: पाकुड़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
0: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में चंद गजलें। इसमें बेगम अख्तर की खुद की आवाज भी है तबरुकन, उसे भी आप सुनिए।
1: सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम। आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फ़जाएँ संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फ़न और फ़नकार से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी एक फ़नकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है।

बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मूसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नयेपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मूसीकार नयेपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में अभी आपने जिगर मुरादाबादी का कलाम सुना। अब आइए सुनते हैं शमीम जयपुरी की अगली गज़ल, आवाज़ जी हाँ बेगम अख्तर की।
1: गज़ल गाने का ख्याल मेरे दिल में यूँ पैदा हुआ कि मेरे वालिद शायर थे, तो जब मैं गाना गाती थी कहते थे ये क्या गज़ल गाओ, कोई गज़ल पढ़ो, सुनने में लुत्फ़ आए।

0: जिगर मुरादाबादी का कलाम आप सुन रहे थे। बेगम अख्तर की गाई इस गज़ल के साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत, शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमता, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विज्ञान जगत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं मीनाक्षी आज के इस अंक को लेकर, और आज के इस अंक में हम बातें करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नाम हम

मैजिक सुनते आ रहे हैं और बहुत बार सुनने को मिलता है और उसे हम महसूस भी कर रहे हैं। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की एक नई देन है, हम यूँ कह सकते हैं, एक नई तकनीक है, ये खोज है जो हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव दिखला रही है। श्रोताओं, पहले जो हम सोचा करते थे विज्ञान के वजह से, वो जो हमारी सोच है वो अब साकार होती चली जा रही है और उसका एक उदाहरण हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं और कहते हैं, ये तेज़ी से विकसित हो रहा है। निकट भविष्य में समाज पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य तकनीकी प्रगति, बढ़े हुए निवेश और तकनीक के प्रति बदलते सामाजिक दृष्टिकोण के संयोजन से आकार लेने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक मशीन लर्निंग का क्षेत्र होने की उम्मीद है। श्रोताओं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल पहले से ही कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जा रहा है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक शामिल हैं। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, डेटा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होता जाता है, मशीन लर्निंग के जटिल समस्याओं को हल करने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली उपकरण बनने की उम्मीद होती जाती है। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विकास का एक और क्षेत्र प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कंप्यूटर की मानवीय भाषा को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इस तकनीक का उपयोग पहले से ही सीरी और एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों से के माध्यम से किया जा रहा है और भविष्य में इसके और भी अधिक उन्नत होने की उम्मीद है। इससे अधिक बुद्धिमान चैट बॉक्स और अन्य जो NLP यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संचालित एप्लीकेशन हैं वो बन सकते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक प्राकृतिक और सहज तरीके से समझ सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। श्रोताओं, AI का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि AI के कारण यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण नौकरियों में भारी कमी आएगी, क्योंकि मशीनें कई ऐसे काम कर पाएंगी जो अभी इंसानों के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी तर्क है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नई नौकरियां और अवसर पैदा करेंगी, खास करके डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, और उनका ये तर्क इस पर भी आधारित है कि जब कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने लगा तो लोगों के अंदर ये भय व्याप्त हो गया था कि इससे भी नौकरियों में भारी कमी आएगी, जबकि कंप्यूटर के प्रयोगों ने नौकरियों में इजाफा किया है और उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। जब स्वास्थ्य सेवा की बात आती है श्रोताओं, तो AI में बीमार के निदान यानी बीमारी के निदान और उपचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता भी देखने को मिलती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को मेडिकल इमेज में ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है जो मानव डॉक्टरों के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है। AI का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे अधिक सटीक निदान और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बन सकती हैं। AI के साथ एक संभावित चिंता सिंगुलैरिटी घटना का जोखिम है, जहां मशीनें मनुष्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो जाती हैं और खुद को तेजी से सुधारने में सक्षम होती हैं। हालांकि यह अभी भी विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है, लेकिन AI के संभावित जोखिमों और नैतिक
निहित अर्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है। वर्तमान में उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग स्वचालन, बेहतर निर्णय लेने और बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता से प्रेरित है। कुछ उद्योगों में भी वर्तमान समय में एआई का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल। एआई का उपयोग चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करने, निदान को सुविधाजनक बनाने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं विकसित करने के लिए किया जाता है। वित्त के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम मूल्यांकन और पोर्टफोलियो प्रबंधन में एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई का उपयोग सिफारिशों को व्यक्तिकृत करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। एआई का उपयोग पूर्वानुमानित रखरखाव, प्रक्रिया अनुकूलन, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। परिवहन और रसद के क्षेत्र में भी एआई का उपयोग मार्ग अनुकूलन, मांग पूर्वानुमान और स्वायत्त वाहनों के लिए किया जा रहा है। एआई का उपयोग बिजली संयंत्रों के पूर्वानुमानित रखरखाव, स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन और सौर ऊर्जा पूर्वानुमान के लिए भी किया जा रहा है। एआई का उपयोग घुसपैठ का पता लगाने, खतरे की खुफिया जानकारी और घटना प्रतिक्रिया के लिए किया जा रहा है। ग्राहक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने, बड़ी मात्रा में ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने और विज्ञापन अभियानों को अनुकूलित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस तकनीक का उपयोग भर्ती, बोर्डिंग और कर्मचारी प्रतिधारण में सहायता के लिए भी किया जा रहा है। कृषि का क्षेत्र भी एआई से अछूता नहीं है श्रोताओं। एआई का उपयोग सटीक खेती, फसल निगरानी और उपज की भविष्यवाणी के लिए भी किया जा रहा है। उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कुछ मौजूदा मांगे हैं और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, एआई के अनुप्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी फैलेंगे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, ये छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए भी सुलभ होती चली जाएगी, जो और साथ ही साथ कंपनियों के नवीनतम विकास के बारे में जानकारी रखना और ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने संचालन को बेहतर बनाने और बाजार में कंपटीशन करने के लिए एआई का लाभ कैसे उठा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं श्रोताओं कि एआई का भविष्य महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति, बढ़े हुए निवेश और अलग अलग उद्योगों में विस्तारित अनुप्रयोगों द्वारा चिन्हित होने की उम्मीद है। समाज को भी एआई के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जागरूक होना होगा और साथ ही जिम्मेदारी की भावना के साथ इस तकनीक का उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। श्रोताओं, एआई मशीनों में मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण है। इसमें एल्गोरिदम और मॉडल का विकास शामिल है जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए आम तौर पर मानवीय बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, जैसे कि भाषा को पहचानना, प्राकृतिक भाषा को समझना और निर्णय लेना। एआई से डेटा विज्ञान का निकट संबंध है। डेटा विज्ञान डेटा से अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है, जबकि एआई मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करने के लिए एल्गोरिदम और मॉडल प्रदान करता है। डेटा विज्ञान और एआई का उपयोग बड़ी मात्रा में
डेटा का विश्लेषण

0: विश्लेषण करने और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा विज्ञान AI मॉडल के विकास और प्रशिक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो श्रोताओं, आज हमने आपसे बात की विज्ञान जगत के इस कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अपने दैनिक जीवन में भी उसे महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में तो इसका हम प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा AI पर आधारित नौकरियों की भी उपलब्धता होगी। और AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के विद्यार्थी अपने जो भी प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहे हैं, विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें आज से चेतना होगा। तो आज के विज्ञान जगत में बस इतना ही। अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए कार्यक्रम विज्ञान जगत से इजाज़त। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, शीर्षक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमता, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का था।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

खिलाड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अभिजीत और अलका याग्निक की। गीत लिखा था अनवर सागर ने और इसकी तर्ज बनाई थी जतिन ललित ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है बाजीगर फिल्म से। आवाज़ विनोद राठौड़ की है। शब्द रचना

बहार आने तक फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों की। मोहन शर्मा ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चित्रपट से कार्यक्रम में। अगला गीत आइए सुनते हैं दबंग 2 फिल्म से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ बांग्ला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना

0: एक्सपीरियंस है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

0: 2023 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन तीन भाषाओं में से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा दसवीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे।

पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: after defeating Malaysia's Goh Sae Fei and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 22-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains, calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins three bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जना मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निमटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है।

0: भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसी तर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें कीं और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जुनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया, गोटा, चांद लोदिया, थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हलके से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहान के इनका से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यज्जा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और

0: वसी तर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। CBSE ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिले होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिबे इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और खानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरदस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इक्तसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की अमूमी तशरीह के मामला पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अलाक़वामी कानून के तहत उसके इक्तदार आला के हकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने के 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर

था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमुई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जेफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीबी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने

अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाएं। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव तेज चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।
2: रंगीला रंगीला रंगीला रे रंगीला आमर छानी यार बंधु कोई।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

हत्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना इंदिवर की थी और तर्ज बप्पी लाहिरी की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है जुनून फिल्म से, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रावण।

जीने की राह फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, शान फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव वर्मन का संगीत है।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की अगली पेशकश है दीदार फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की। नगमा निगार हैं शकील बदायूनी और मौसिकार नौशाद।

अमर फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद लता मंगेशकर की थी। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और इसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने। अगला गीत आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर की। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत है।

आदमी फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद की। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था नौशाद ने।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्द रचना शैलेंद्र की थी और इसकी धुन बनाई थी HD वर्मन ने। हम दोनों लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार

हम दोनों फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म खिलौना से। आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्य

0: एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti.

0: investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।